करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आपका अपना रेडियो, आप जी की आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विस्तार है।

हम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता अंबाले का अपना रेडियो। सुन दे रहो अपने पसंद के गाने।

रेडियो विदिशा 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदिशा। हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
2: पेश है कार्यक्रम नारी एक दर्पण एपिसोड 3। आज के मेहमान हैं ऐश्वर्या धीमान और ज्योति बगन। प्रस्तुतकर्ता आरजे सेजल। निर्देशन भारत सोपुरी।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सेजल, आपका स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम नारी एक दर्पण के तीसरे अंक में। पिछले दो अंकों में हमने बात की उन महिलाओं के बारे में जिन्होंने समाज की बेड़ियां तोड़ आसमान की ऊंचाई को छुआ, महिला और बाल विकास की ओर काम किया, साथ ही साथ देश को उन्नति के मार्ग पर लेकर गई और आज की पीढ़ी के लिए एक मिसाल के रूप में या कह लीजिए कि एक प्रेरणा के रूप में रूबरू हुई। इसीलिए आज के कार्यक्रम में हम आज की पीढ़ी को ही लेकर आए हैं। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे समाज के महिलाओं की तरफ बदले रुख की, महिलाओं को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और आज के युवा किस प्रकार सफलता को पा सकते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दो युवतियां जो अपने करियर के शुरुआती दौर में हैं और अपनी अपनी फील्ड में एक्सेल कर रही हैं, एक जो बिजनेस वुमन है और गृहिणी भी, और एक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और आज की आत्मनिर्भर युवती भी। तो ज्योति और ऐश्वर्या, मैं आप दोनों का स्वागत करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम में।
1: थैंक यू सेजल हमें इनवाइट करने के लिए।
2: थैंक यू सेजल, एक्साइटेड।
0: हम आप दोनों से बात करेंगे ताकि हमारे श्रोता आप दोनों को सुन पाए और जान पाए। तो शुरुआत करते हैं ज्योति आपसे। मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोताओं को आप अपने बारे में कुछ जानकारी दें।
1: हेलो, मैं ज्योति बग्गल हूँ। मैं अम्बाला की रहने वाली हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग अम्बाला कैंट से की थी। देन मैंने अपना कोर्स किया चंडीगढ़ से वेब डिजाइनिंग का, प्रो डेवलपमेंट का। तो फिर उसके बाद मैंने मेकअप का भी कोर्स किया है और बाद में फिर मैंने मेकअप में फ्रीलांसिंग की है। एंड देन फिर मैं फिर से अम्बाला आ गई, फिर अम्बाला में आकर फिर उसके बाद शादी होगी, शादी के बाद फिर बेबी, फिर उसके बेबी के बाद मैंने अपना एक न्यू बिजनेस खोला है, उसका नाम है द वेब आर्ट। और मैं रेजन आर्टिस्ट हूँ और मैं हैंड कास्टिंग भी करती हूँ, हैंड इम्प्रेशन।
0: तो ज्योति, आपने बोला रेजन आर्टिस्ट और हैंड कास्टिंग, तो आप ये बता सकती हैं, क्योंकि बहुत यूनिक वर्ड है मेरे लिए भी और शायद श्रोताओं के लिए भी, तो ये चीज है क्या?
1: रेजन आर्ट में ये होता है कि आप अपनी कुछ भी चीज, मतलब जो क्यूशियस चीज है, वो आप प्रिजर्व करवा सकते हो लाइफ टाइम के लिए। ये आपके लिए एक मेमोरी हो जाती है, ये केमिकल होता है, उसमें सब हमेशा के लिए प्रिजर्व हो सकती है अगर हम उसको इतनी ऊपर से फेंके तब भी नहीं टूटता वो। और हैंड कास्टिंग वो होता है जैसे बेबी हमारा 2 मंथ्स का है, 1 ईयर का है, तो हम उसके हैंड कास्ट करवा सकते हैं। वो एक तरह से कास्टिंग होती है, वो जैसे बेबी बड़ा होता रहता है तो बड़े होकर देखेगा कि हाँ भाई ये हमारे मम्मी पापा ने करवाया था, हमारा हैंड का कितने छोटे छोटे हाथ थे हमारे और हम बड़े हो गए हैं, तो उनके लिए एक मेमोरी रह जाती है लाइफ टाइम के लिए कि हाँ हम इतने छोटे छोटे थे।
0: तो ये सारा काम आप खुद ही मैनेज कर रही हैं इस वक्त या आपकी टीम है?
1: नहीं, ये मैं और मेरे हस्बैंड करते हैं। अभी हमारा स्टार्टअप है तो हमने कोई अभी कोई हेल्पर नहीं, सिर्फ हम दोनों ही करते हैं
0: जी। तो ज्योति, जैसे अभी आपने बताया कि आपने वेब डिजाइनिंग की, तो वेब डिजाइनिंग से आपका इंटरेस्ट इस तरफ कैसे शिफ्ट हुआ और ये कब आपने चीज डिसाइड की कि मुझे ये करना चाहिए?
1: जैसे वेब डिजाइनिंग से मैंने स्टार्ट किया था तो उसमें एडिटिंग सिखाते हैं वेब डिजाइनिंग में, तो जैसे फोटोग्राफी, आफ्टर बेबी मैंने ना अपने बेबी का फोटो शूट किया, उसको एडिट किया, जैसे उसका नाम कीशु है तो मैंने कीशु के अंदर लेटर्स में फोटोज लगा दी, तो फिर मैंने ऐसे ही उसको फ्रेम करवा लिया, ऐसे ही मैंने डाला अपने इंस्टाग्राम पर। तो उन्होंने कहाँ से बनवाया, किसी ने पूछा मेरे से कहाँ से बनवाया, तो मैंने कहा ये मैंने खुद बनाया है। तो कहते अच्छा कितने का बन जाएगा ये वो, मैंने कहा कि ये तो अभी मैंने कुछ भी नहीं, ये तो मैंने खुद ही बनाया है। तो मेरी एक फ्रेंड ने सजेशन दिया मुझे कि आपको ना ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, तो उससे मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। पहले तो मैं सिर्फ फोटो फ्रेम्स वगैरह बनाती थी, बट उसके बाद मैंने जैसे थोड़ा सर्च किया तो मेरे एक्सप्लोर पेज पे वो आता था, जैसे रेजन आर्टिस्ट आर्ट का, तो मैंने इतना इंटरेस्ट हो गया उसमें, तो मैंने उसमें एक साल किया पहले, तो फिर उसके बाद मैंने खुद ही ट्राई किया कि हाँ ये कहाँ से सीख सकते हैं हम, तो मैंने यूट्यूब से ना इसको थोड़ा लर्न किया काफी शुरू में, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत आई कि हाँ ये कैसे, कहाँ से सामान लाना है, कहाँ से वेंडोर वगैरह सब कुछ कैसे होता है, मोल्ड्स वगैरह, तो काफी दिक्कत आई, बट बहुत सही चल रहा है अब तो।
0: तो आप जैसे ये चीजें प्रिजर्व करती हैं, इन्हें एक तो प्रिजर्व करना भी मुश्किल है, और ये चीजें हम अपनी लाइफ में किस तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं, और क्या क्या टाइप्स के आप प्रोडक्ट प्रिजर्व करते हैं?
1: जैसे मुश्किल, जो काम करता है उसके लिए तो मुश्किल नहीं है, बट जो देखता है उसके लिए बहुत मुश्किल है। अब जैसे हैंड कास्टिंग है, अब बेबी जब जैसे ग्रो होता है वो वापिस तो नहीं छोटा हो सकता ना, तो वैसे ही हम उनके हैंड कास्ट करते हैं, तो ताकि मेमोरी रह जाए हमेशा के लिए, तो फिर वैसे ही हैंड कास्टिंग और वैसे ही रेजन होता है कि जैसे एक बार बेबी होता है तो उसकी कॉर्ड वगैरह होती है, प्रेगनेंसी किट होती है, बेबीज के हेयर्स होते हैं, नेल्स होते हैं, तो वो प्रिजर्व होते हैं, ब्रेस्ट मिल्क प्रिजर्व होता है, और एक जैसे शादी होती है, शादी एक ही बार होती है, तो उसकी जो वरमाला होती है ना वो हम लाइफ टाइम के लिए प्रिजर्व कर देते हैं। जैसे अभी तेलंगाना में मेरे पास मैरिज थ्रेड रोप आती है, तो वो प्रिजर्व करवाते हैं, और फ्लावर्स आते हैं काफी सारे, तो वो हमेशा के लिए हमारे पास रह जाते हैं।
0: जी ज्योति, आपसे बातें यूं ही जारी रहेंगी, क्योंकि मैं बहुत क्यूरियस हूँ इस बारे में और जानने के लिए, और हमारे श्रोता भी जरूर होंगे। उससे पहले मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोता रूबरू हों ऐश्वर्या से भी, तो ऐश्वर्या मैं चाहूंगी आप अपने बारे में छोटी सी इंट्रो दें।
2: जरूर, तो मेरा नाम ऐश्वर्या धीमान है एंड मैं अंबाला से बिलोंग करती हूँ। मैंने स्कूलिंग अपनी अंबाला डीसी मॉडल स्कूल से की है, जहाँ पे मैंने सब एक्टिविटीज की है, पढ़ाई से लेके को करिकुलर। स्कूलिंग के बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है पंजाब से, एलपीयू जलंधर। मेरी ग्रेजुएशन के ड्यूरिंग मैंने बहुत सोशल वर्क में आई वॉज एक्टिव, और मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं अपना कुछ कंट्रीब्यूशन सोशल अपने समाज की तरफ भी दे सकूं, और रेदर देन कि मैं सिर्फ पढ़ाई में रहूं, मैंने कोशिश किया कि वहां पे भी मेरा कंट्रीब्यूशन जाए। और उसके बाद कॉलेज से प्लेसमेंट का ऑफर मिला, और मैं अपनी फैमिली से फर्स्ट कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, तो वेरी हैप्पी कि अभी मुझे अपनी लाइफ एक अननोन सिटी, जहाँ पे मैंने एज अ स्ट्रेंजर अपना ज्वाइन किया और वहाँ पे अभी मैं सस्टेन कर रही हूँ, तो अभी यहाँ तक का सफर यही सब है।
0: तो ऐश्वर्या, मैं एक कॉमन सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने अभी कहा कि आप फर्स्ट इंजीनियर हैं अपनी फैमिली में से, तो ये इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ कैसे गया?
2: हाँ, तो हुआ क्या कि फिफ्थ क्लास में मेरे पापा घर पे कंप्यूटर लेके आए, तो जैसे एक छोटे से बच्चे को क्यूरियोसिटी होता है कि हमें एक्सप्लोर करना है कि इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके अंदर मैंने शुरू तो पेंट से किया या फिर गेम से किया, लेकिन वो चीज़ मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लगी कि हम इस कंप्यूटर, एक छोटी सी चीज़ है, उससे हम कुछ कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं, आई मीन बहुत बड़ा स्टेज पे अपने उसको काम को लेके जा सकते हैं, तो आई थिंक वहाँ से ही मुझे बहुत इंटरेस्ट बना। और जब मेरे से कोई स्कूल में पूछता था कि आपका क्या गोल है, बड़े होके क्या बनना है, तो मैं यही बोला करती थी कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो आई थिंक वो धीरे धीरे इंटरेस्ट बिल्ड हुआ कि कंप्यूटर का वर्ल्ड बहुत वास्ट है, वी कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग। आई थिंक बचपन से फैमिली के थ्रू इंटरेस्ट बना स्टार्टिंग में, एंड उसी के ऊपर मैंने काम किया।
0: तो आप अंबाला में ही पली बड़ी हैं, और एकदम से दूसरे शहर में जाना, वहाँ काम करना, वहाँ रहना, वहाँ का रहन सहन अपनाना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, तो एज एन फीमेल आपको क्या परेशानी आई, और एज एन पर्सन आपने अपने अंदर क्या डेवलपमेंट फील करी बाहर जाकर?
2: अगर मैं बताऊं तो पहली हर्डल तो घर पे थी, ऑल्दो मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, हाँ तू जा सकती है, सिटी दूसरी है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बट मम्मी की तरफ से थोड़ा सा झिझक था कि अभी बेटी छोटी है, अभी बाहर जाएगी तो वो कैसे सस्टेन करेगी, खाना नहीं आता बनाना, तो वो सब घर में ज़रूर था, लेकिन मुझे लगता है कि पापा की वजह से मैं बाहर गई, और वहाँ पे जाके भी बहुत हर्डल्स थे, जैसे कि मैं बोल सकती हूँ वहाँ पे लैंग्वेज हर्डल था, मुझे नहीं आती थी उनकी लैंग्वेज और वो मेरे को नहीं समझ सकते थे, तो और खाना बहुत डिफरेंट है वहाँ पे, तो आई थिंक ये दो प्रॉब्लम थी, और वहाँ पे जाके फिर धीरे धीरे मैंने एडजस्ट किया कि लैंग्वेज बैरियर हटाया धीरे धीरे, वहाँ के लोगों से भी घुले मिले, ऑल्दो इंग्लिश में वहाँ पे कन्वर्स करना पड़ता है, बट वहाँ के लोगों से भी कनेक्शन बनाना शुरू किया, धीरे धीरे वो कनेक्शन बन गया और आई थिंक अभी अच्छा चल रहा है. वहाँ पे भी ऐसा ही लगता है कि जैसे अपना घर हो बैंगलोर. तो अभी वो स्टेज पे मैं आ चुकी हूँ.
0: जी, जैसे आपने कहा कि फैमिली बहुत सपोर्टिव रही इस चीज में बाहर, और फैमिलीज को होना भी चाहिए. और इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब आपने पहली बार आफ्टर योर 12th और आफ्टर 10th आपने जब कहा कि आप परस्यू करना चाहती हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो फैमिली का उस टाइम पर क्या रिस्पॉन्स रहा इस चीज को लेकर?
2: जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरी फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट था और मैं चाहती हूँ कि हर किसी की फैमिली ऐसे ही अपने बच्चे को सपोर्ट करे, वो जो भी करना चाहता है उसके साथ खड़ी रहे, और अगर बच्चा गिरे भी तो उसको हौसला दे कि हाँ तुम खड़े होके अभी फिर से ट्राई कर सकते हो. मुझे लगता है मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी और उनकी वजह से ही ये सब पॉसिबल हो पाया.
0: तो ज्योति, मैं यही चीज आपसे भी पूछना चाहूंगी कि आपकी फैमिली का क्या रिस्पॉन्स रहा जब आपने पहली बार उन्हें बिजनेस शुरू करने के बारे में बताया?
1: मेरी फैमिली, इन लॉज भी बहुत अच्छे हैं, मेरी मम्मी और वाले भी बहुत अच्छे हैं. उन्होंने मेरी बेबी को संभाला और मेरी इन लॉज ने मुझे सपोर्ट किया कि हाँ तुम्हें करना चाहिए, आजकल तो सब कर रहे हैं, तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए, तुम घर बैठ के क्या करोगे. तो उन्होंने इतनी हेल्प की है ना मेरी, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉज है, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है. और मेरी सिस्टर है, जो मुझे सामान चाहिए वो ला कर देते हैं, कई बार मैं नहीं जा सकती तो वो जाते हैं. इनफैक्ट मेरे हस्बैंड मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, अगर वो सपोर्ट ना करते ना तो आज मैं यहाँ तक ना आती. और हम दोनों में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है ना कि अगर ना होती तो मैं ये बिजनेस स्टार्ट ही ना कर पाती, क्योंकि कई लोग बोल देते हैं कि तू क्या करेगी, तू घर बैठ. हम घर बैठने के लिए तो नहीं है ना, मतलब कि हमें घर के साथ साथ कुछ करना भी चाहिए.
0: जी, तो बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा नारी एक दर्पण में. फिलहाल जो दो युवतियां हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि उनको कौन सा गाना पसंद है, और वो गाना हम अपने श्रोताओं को भी सुनाएंगे. तो ज्योति, आप अपना कोई मन पसंदीदा गाना बताएं.
1: बम बम भोले, मेरी बेटी को ना सॉन्ग पसंद है.
3: చకరక చీచాచో చకలో రంగండో వండో లకరక టమ్ అక్కో టక్కో ఇడిగిడిగిడిగో ఇడిపాయ విడిపాయ చికి చక చో గిలి గిలి మల్ సులు సులు మల్ మకరక హుకు బుకు రే టుకు బుకు రే చకలక బిక్కో చిక్కో సిలి సిలి సిలిగో బగడదుం జగడదుం చికి చక చో.

0: गाना तो बहुत ही मधुर था और बहुत ही खूबसूरत भी और शरारत से भरा भी। और अब आगे की चर्चा हम शुरू करते हैं हमारे दो खूबसूरत मेहमानों के साथ। ऐश्वर्या, आपने कहा कि आप सोशल वर्क से जुड़ी हैं, तो ये नेशनल सर्विस स्कीम सोशल वर्क से रिलेटेड रहा, तो आप इससे कैसे जुड़ी और कैसे इतनी कम उम्र में सोशल वर्क की तरफ आपका रुझान गया?
1: तो इसकी शुरुआत जो लगता है मेरे दादाजी से हुई। तो वो हमेशा से एक देश हित भावना हमारे अंदर डालते आए हैं। तो जैसे ही मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, उधर हमें बहुत सारे क्लब थे जो हम ज्वाइन कर सकते थे, जैसे NCC, NSS थी। तो मुझे हमेशा से रहता था कि मैं किसी ना किसी माध्यम से अपने देश के काम आ सकूं या कुछ भी छोटा से छोटा कंट्रीब्यूशन कर सकूं। तो मैंने सोचा कि हम NSS ज्वाइन करते हैं। तो मैंने फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में ही NSS ज्वाइन किया था। धीरे धीरे हमें वहाँ पे जैसे ही जुड़े, उसके अंदर हम स्लम एरियाज में बच्चे होते हैं, उनको खाना खिलाते हैं या फिर उनको कपड़े बांटते हैं। जैसे हॉस्टल में हम लोग काफ़ी जे क्या करते हैं, कपड़े ऐसे ही रखे होते हैं जो वो यूज़ नहीं करते हैं, तो हम हॉस्टल से कलेक्ट करके जो भी सामान किसी के काम आ सके वो सब कलेक्ट करके हम स्लम एरियाज में बांटने जाते थे। हमने कैंप्स लगाए हैं गांव के अंदर जाके, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को हमने कंप्यूटर से जोड़ने की कोशिश की है, या फिर कह सकते हैं कि वोटिंग के लिए वहाँ पे अवेयरनेस की है कि आप चाहिए, या फिर हम स्कूल में जाके कभी पेंटिंग कॉम्पिटिशन जो कि बच्चों को नेशन से जोड़ सके। तो ये सब टाइप के काम हमने NSS में किए हैं। और मुझे लगता है एक अलग तरह का डेवलपमेंट होता है जब आप ऐसी चीज़ों से जुड़ते हैं। वहाँ पे इतने तरह तरह के लोगों से आप जुड़ते हैं, तो मुझे लगता है एक अलग तरह का डेवलपमेंट होता है आपके पर्सनालिटी में, एंड आप अलग तरह से निखर के आ सकते हैं उसके माध्यम से।
0: जी बिल्कुल सही कहा कि जीवन में अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे आपने कहा कि बच्चों को आपने कंप्यूटर से जोड़ा, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा और किस तरीके से आपने बच्चों को इस टेक्नोलॉजी से जोड़ा?
1: तो हम लोग कॉलेज से, हमारे पास लैपटॉप होता था, तो हम लोग उसे गांव में लेके जाते थे। सब बच्चों को वहाँ पे जो भी कॉमन प्लेस होती है, तो हम वहाँ पे उन लोगों को इनवाइट करते थे कि अपने बच्चों को भेजो, हम उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। तो वो सब गांव से बच्चे इकट्ठा होते थे, तो उनको एक तरह से हम टीचर बन के कभी चुप कराते थे, कभी दिखाते थे कि आप पेंट कर सकते हो। तो बहुत ही इंटरेक्टिव वे में हम जोड़ने की कोशिश करते थे बच्चों को, कि वो सिर्फ एक गाँव में ही सिमट के ना रह जाए, उनको पता लगे कि बाहर भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिनसे वो जुड़ सकते हैं। तो बच्चों के साथ हमने भी उनके दोस्त जैसा बन के उनको सिखाने की कोशिश की है।
0: जी बिल्कुल, बच्चों के साथ एक बार खुद का भी बचपना याद आ जाता है और इस खूबसूरत दुनिया को उन्हें भी जरूर देखना चाहिए। तो ज्योति, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या आप भी इस तरीके के सोशल वर्क से जुड़ी हैं?
2: अभी तो नहीं, बट ना थोड़े टाइम बाद हम भी स्टार्ट कर रहे हैं कि जो बेरोजगार महिलाएं होती हैं, जो घर में होती हैं, बैठी होती हैं, उनको भी काम दें। जैसे ज्वेलरी मेकिंग का काम होता है, तो हम उनको देंगे ताकि वो भी अपना स्टार्टअप करे, और फिर हम उनको आगे उनके प्रोडक्ट्स बनेंगे तो हम सेल करेंगे, हमारे पास भी एक न्यू प्रोडक्ट हो जाएगा।
0: तो अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है, तो इसमें आप किस तरीके के प्रोडक्ट्स अभी प्रोवाइड करने वाली हैं?
2: अभी आपने कभी सुना है मिठाई कैंडल?
0: नहीं, हमने तो दूसरी कैंडल ही दिया, ये मिठाई कैंडल क्या चीज है?
2: अभी फेस्टिवल सीजन आने वाला है, तो हमने एक न्यू लॉन्च किया है, लड्डू कैंडल, मोदक कैंडल, घेवर कैंडल, गुजिया कैंडल, उसमें काफी सारी वैरायटीज हैं, तो अभी हम लॉन्च करने वाले हैं वो।
0: तो ये कैंडल खाने वाली कैंडल है या जलाने वाली?
2: को देख के खाने का मन करेगा, बट वो वैक्स है, वो सोय वैक्स की होगी प्योर।
0: तो ये बहुत ही क्रिएटिव चीज है और नई चीज भी है, मैंने पहली बार ये चीज सुनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारे श्रोताओं को भी जानकारी अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। तो ज्योति, जब आपने अपना बिजनेस शुरू किया, तो आपको किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा?
2: जब कोई कुछ भी न्यू स्टार्टअप करते हैं, ऑफकोर्स काफी दिक्कतें आती हैं, और फिर कई बार तो कस्टमर भी हमें ट्रस्ट नहीं कर पाते, हमें कस्टमर का भी ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ता है। बट कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर हमसे कनेक्ट करे तो हम उनसे कई बार हाफ पेमेंट करवा लेते हैं, क्योंकि फुल पेमेंट चाहिए होती है एडवांस में, क्योंकि कस्टमर अपना सामान बनवा कर भाग जाते हैं कई बार, तो ऐसे ही होता है। और फिर हमारे साथ हुआ था एक बार ऐसे, कस्टमर ने हाफ पेमेंट की, आई डोंट नो कि उनके साथ हुआ क्या था, उन्होंने अपना प्रोडक्ट नहीं मंगवाया हमसे। अभी तो फिलहाल हमारे पास उनका प्रोडक्ट पड़ा है अभी भी, तो वो हमने एज अ प्रमोशन यूज कर रहे हैं, हमारे लिए तो कुछ वेस्ट नहीं है। अब मेरे पास कोई न्यू कस्टमर आएगा, वो देखेगा कि कैसा है आपका ये रेजन, होता क्या है।
0: तो आपने जैसे बताया कि इस तरीके के अपने शुरू में फेस किए, तो जो अभी नए बिजनेस में आ रहे हैं इस वक्त युवा या जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्हें आप क्या राय देना चाहेंगे, इससे कैसे वो बच सके?
2: बस यही बोलना चाहूंगी कि आप हमेशा एडवांस पेमेंट करवाएं और अपने कस्टमर को अपने ऊपर ट्रस्ट करवाएं कि हाँ हम सब प्रोवाइड करते हैं, कि हम फेक नहीं है, हम फ्रॉड नहीं है, हम अपनी सर्विस टाइम पे देते हैं। अगर थोड़ा लेट हो गया तो कुछ रीजन होगा इसलिए लेट हो गया, बट कस्टमर को भी ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा सपोर्ट करनी चाहिए कि हाँ स्मॉल बिजनेस है, होता रहता है, थोड़ा लेट हो ही जाता है। कई बार कस्टमर बोलते हैं कि आपने लेट कर दिया, थोड़ा टाइम लगता ही है हर चीज में, कुछ ना कुछ दिक्कतें आती है ना।
0: जी जरूर, दिक्कतें तो हर एक काम में आती हैं, बस हमें कभी हौसला नहीं हारना चाहिए। और ज्योति, आपका काम बहुत ही यूनिक है, तो क्या कभी आपके किसी कस्टमर से ऐसी कोई यूनिक डिमांड आई है जिसे आप देखकर या सोचकर ऐसा लगा हो कि अभी इसको कैसे करें हम?
2: हाँ, आई थी ऑफ कोर्स, ब्रेस्ट मिल्क आया था, सोच रही थी कैसे करूँ, फिर उसको थोड़ा सर्च किया कैसे करना है, फिर ब्रेस्ट मिल्क का पाउडर बनाया, तो फिर उसके बाद चीज बनाया, स्टार बनाया उससे, तो वो एक फ्रेम में प्रिजर्व किया।
0: अच्छा ऐश्वर्या, तो जैसे ज्योति के साथ एक यूनिक एक्सपीरियंस हुआ, आप एक कम्प्लीटली डिफरेंट शहर में गई रहने, यहाँ के मुकाबले आपको वहाँ क्या ऐसा कोई डिफरेंस दिखा हो या कोई एक्सपीरियंस हुआ हो?
1: यहाँ पे दो बड़े रोचक इंसिडेंट हैं जो मैं बताना चाहूंगी। जैसे खाने को लेकर, तो हमारे यहाँ पे रोटी बनाई जाती है, मुझे वैसे कभी खाना बनाना मैंने सीखा नहीं इधर, लेकिन मैं बैंगलोर चली गई जॉब के लिए और वहाँ का खाना बहुत ही अलग है हमारे इधर से, तो मुझे खाने में बड़ी दिक्कत आई। तो कभी मार्केट में निकल गए सब्जी लेने, सब्जी वाले को बोला कि हमें भिंडी चाहिए, तो उनको नहीं पता है भिंडी क्या होती है, तो उन्होंने मुझे कुछ और दे दिया। कह सकते हैं कि वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आई थी, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे रह के मुझे खाना बनाना आ गया है, तो अभी वो चीज़ें सॉर्ट हो गई हैं। और दूसरा एक्सपीरियंस मैं ऐड करना चाहूँगी वहाँ की शादियों का, जो कि हमारे यहाँ की शादियों से बहुत अलग होती हैं। जैसे हमारे इधर शादियों में इतने गाने, बॉलीवुड, डीजे एंड बहुत लंबा सेलिब्रेशन चलता है, ऐसा साउथ इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो वहाँ बड़े ही सिंपल तरीके से लोग शादी रखते हैं और वहाँ पे ऐसे डीजे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। उनका खाना भी बहुत सिंपल, केले के पत्ते के ऊपर आपको सब 10 तरह की चीज़ें सर्व करते हैं, और आप वहाँ पे जाके बड़ी सादगी से बैठ के वहाँ पे खाना खाइए और शादी वाली फोटो खिंचवा के, और सुबह ही आपका 11-12 बजे तक सब खत्म हो जाता है और उसके बाद आप घर आ जाओ। तो मुझे लगा कि ये बहुत प्रिंस आए।
0: जी, नए अनुभव भी होना जीवन में बहुत जरूरी है। तो ज्योति, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में अभी हमने सुना, क्या आपका बिजनेस रहा वो भी हमने जाना, काफी क्रिएटिव प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे या कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहे तो हम किस तरीके से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं या ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं?
2: मेरा इंस्टाग्राम पर पेज है @thewebart_, तो आप वहाँ पर जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी, देन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज्योति, आपका काम बहुत ही क्रिएटिव है और जानकर अच्छा लगा, एक नई जानकारी मिली है आज आपसे हमें। तो ऐश्वर्या, अब हम आपकी तरफ आते हैं, आपकी पसंद का कोई गाना सुनना चाहेंगे और हमारे श्रोताओं को भी सुनाना चाहेंगे।
1: ये सॉन्ग मैं अपने नेशन के लिए, टू बिल्ड इट, उसको डिवोट करना चाहूंगी। मैं दो लाइनें गुनगुनाना भी चाहूंगी और चाहती हूँ ज्योति भी मुझे ज्वाइन करे इसके लिए।
2: अब तो हमें आगे बढ़ते हैं, रहना

0: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर नारी एक दर्पण। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दो युवतियाँ जिनसे हमारी बातचीत चल रही है, और अब हम हमारी बातचीत को युवाओं की तरफ लेकर जाएंगे और आजकल के ट्रेंड के बारे में बात करेंगे। ऐश्वर्या, आप इस वक्त आईटी सेक्टर में काम कर रही हैं, और अभी हाल ही में आईटी में एक डेवलपमेंट हुई है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, जिसकी वजह से युवाओं के बीच इस बात की काफी चर्चा है कि AI कहीं ना कहीं हमारी जॉब को खत्म कर सकता है, मैन पावर को खत्म कर सकता है। तो इसके ऊपर आपका क्या विचार है?
1: मुझे लगता है AI को अभी काफी टाइम हो चुका है हमारे लाइफ में आए हुए, लेकिन रिसेंटली अभी ChatGPT आया है। यूथ में बहुत ही डर है कि हमारी जॉब से लेके चला जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि AI और ह्यूमन दो अलग अलग चीजें हैं। कभी AI टोटली रिप्लेस तो नहीं कर सकता है, बिकॉज ह्यूमन के पास ऑब्वियसली इमोशनल इंटेलिजेंस अपनी अलग होती है। तो जरूर कोई रिपीटेटिव टास्क होता है जो वो AI हैंडल कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे यूथ को कोई डिस्करेज होने की जरूरत है। तो जो भी AI बनाने की स्किल है वो हम लर्न कर सकते हैं, या जो भी टेक्नोलॉजी अभी ट्रेंड में आएगी वो हम यूज और लर्न कर सकते हैं, और इससे कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी ह्यूमन का इंटरफेरेंस कम नहीं होने वाला है। मुझे लगता है हाँ, जरूर कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन हम अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अपस्किल कर सकते हैं, एंड कोई दिक्कत ऐसी खास आने वाली नहीं है।
0: जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि समय के साथ साथ खुद को डेवलप करना भी जरूरी है। और एक चीज मैं अब करियर से रिलेटेड पूछना चाहूंगी कि आज के समय में जो बच्चे हैं या किशोर हैं, वो पढ़ाई को लेकर और अपने करियर को लेकर बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, या कह लीजिए स्ट्रेस ले लेते हैं उस चीज का। तो अभी आप दोनों इस स्टेज से निकली हैं, तो आपने इस चीज को कैसे टैकल किया, और आज के बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे टैकल कर सकते हैं इसे?
1: मुझे लगता है हम लोग स्कूल में बहुत ही ज्यादा टेंशन लेते थे, इस टेस्ट में हम फेल हो गए, JEE एग्जाम नहीं हुआ हमसे, और ये छोटी छोटी चीजें तब हमें बहुत बड़ी लगती थी। लेकिन अगर इस स्टेज पे आके कहें तो वो सब चीजें उस टाइम पे बड़ी होती हैं, लेकिन उससे कभी डीमोटिवेट होके वहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। बच्चों को स्पेशली स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और जो भी हो जितना हो बच्चों को एल्डर से सीनियर से कनेक्ट रहना चाहिए, और सोशलाइज कीजिए बाहर और चीजों को एक्सप्लोर कीजिए।
0: जी बिल्कुल। ज्योति, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
2: हाँ, जैसे पहले मेरे को वेब डिजाइनिंग प्रो डेवलपमेंट में इंटरेस्ट था, और फिर मेरी फैमिली भी चाहती थी कि मैं IT फील्ड में जाऊँ। बचपन से वैसे मुझे इंटरेस्ट था आर्ट एंड क्राफ्ट में, क्योंकि थोड़ा हमारा माइंड चेंज होता रहता है जब हम छोटे होते हैं, तो फिर हम जैसे बढ़ते रहते तो हमें पता चलता है कि हाँ, हमें इसमें चीज में इंटरेस्ट है। तो जैसे हमें जिस चीज में इंटरेस्ट है ना, हम उसको दिल से करेंगे, पूरी लाइफ करेंगे, तो कोई स्ट्रेस भी नहीं होता उसमें, सो एंजॉय से मजे से काम करते रहते हैं सब।
0: जी बिल्कुल, अपनी पसंद का काम हो तो कभी बोरियत भी फील नहीं होती। ज्योति, आप एक बिजनेस वुमन हैं, साथ में मदर भी हैं, तो आप ये सब कैसे मैनेज करती हैं?
2: जो मेरा बेटा है ना, वो मेरे मम्मी पापा के पास रहता है एक्चुअली, तो मैं सारा काम मैनेज कर लेती हूँ। तो मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है, और वो भी मेरी हेल्प करवाता है, कई बार पैकिंग करता है वो, बल्कि 2.5 ईयर्स का है फिर भी पैकिंग में हेल्प करवाता है। तो मैं उसके साथ आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज करती हूँ, हमारा दोनों का एक पेज भी है कि ईशू एंड मम्स क्राफ्ट हाउस, तो हम दोनों वहाँ पे वीडियो बनाते हैं, काफ़ी चीज़ें करते हैं अलग अलग, तो वो भी मैनेज हो जाता है। और जितना टाइम मिलता है मुझे, मैं अपना काम कर लेती हूँ, घर भी संभालती हूँ, सब कुछ करती हूँ।
0: जी, इससे बच्चों का क्रिएटिविटी लेवल भी इंक्रीज होता है जब मदर उनके साथ कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज करे। तो अब मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे अब भारत बदल रहा है, एक न्यू इंडिया बन रहा है, नया भारत बन रहा है, तो आपको क्या लगता है दोनों को कि इसमें महिलाओं का क्या योगदान हो सकता है?
1: मुझे लगता है एज अ सोसाइटी हमें एक साथ विमेन को आगे भेजना चाहिए और पीछे से सपोर्ट पूरा देना चाहिए, ताकि वो भी इंडिपेंडेंट हो सकें, और उनको ऐसा ना कभी लाइफ में फील हो कि दे आर डिपेंडेंट ऑन समवन और वो बहुत किसी के ऊपर भार हैं। तो मैं चाहती हूँ कि विमेन भी अपना इंडिपेंडेंट होके घर भी संभाल सकें, और अपना अपने आप पैरों पे खड़े हो सकें, और अपने एक्सपेंसेस खुद हैंडल कर सकें।
2: जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मैं अपना एक वर्क शुरू करना चाहती हूँ, जो बेरोजगार महिलाएं अपने घर बैठी हैं, उनको घर बैठे बैठे उनको कुछ काम देना है मुझे, तो ऐसे ही वो खुद भी कुछ, जैसे कोई अपना टिफिन बॉक्स वाला स्टार्ट कर सकता है काम, कोई अपना जो सिलाई होती है टेलर वगैरह वो कर सकते हैं, आजकल ऊन के स्वेटर बुनते हैं वो कर सकते हैं लोग, तो आगे जा मतलब ऐसे ही थोड़ा आपको खुद भी कदम बढ़ाने चाहिए। और ना मैं कहना चाहूंगी कि हर हस्बैंड को अपनी वाइफ को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके बिना अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो वो कुछ भी नहीं कर सकते।
0: जी बिल्कुल, सपोर्ट चाहे फैमिली का हो, हस्बैंड का हो, दोस्तों का हो, हर एक पड़ाव पर बहुत जरूरी होता है। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि ये अम्बाला कैंट का पहला रेडियो स्टेशन है, तो आप दोनों को यहाँ पर, आप पहली बार आई हैं, तो यहाँ आकर आपको कैसा लगा?
2: यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन अगर मेरे पापा होते, मतलब माय ग्रैंडफादर, वो ना रेडियो सुनते थे डेली, तो होते तो वो मेरा भी ये प्रोग्राम सुनते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, उनको इतनी खुशी होती है कि हाँ मैं ये सुनता हूँ, तो मेरी इसमें पोती मेरी यहाँ पर आई है, उसकी आवाज आई है, वो बहुत इंटरेस्ट लेते, इतने खुश होते।
1: और मेरे पापा रोज ऑफिस जाते हुए अम्बाला रेडियो जरूर सुनते हैं, तो वो मुझे बताते थे कि ऐसे अम्बाला का रेडियो अभी मैं सुनता हूँ और बहुत अच्छा आता है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मैं भी उनको इस रेडियो के थ्रू आवाज़ पहुँचा सकती हूँ, और मेरे लिए बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था और मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस को बताकर।
0: जी, बड़ों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है हमारे जीवन में, और मैं यही कहूंगी कि चाहे वो आपके साथ नहीं है लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। बातें हमारे पास करने को बहुत है लेकिन समय की हमारे पास बहुत कमी है इस वक्त, तो इस कार्यक्रम को अंत की ओर लेकर जाऊंगी और चाहूंगी कि आप दोनों जो श्रोता हमें सुन रहे हैं उनको एक संदेश दें, एक मैसेज दें, जो भी आप देना चाहती हैं।
2: जैसे मैं अभी एक वर्किंग वुमेन भी हूँ और होम मेकर भी हूँ, तो काफ़ी परेशानियाँ होती हैं लाइफ में भी, तो हमें उसमें से निकल करना, हमें आगे कदम बढ़ाना है, और जब तक हम कदम नहीं बढ़ाएंगे ना तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मतलब हमें खुद अपने लिए स्टैंड होना है तभी हम कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज हमारे लिए कोई बैठा नहीं है कि हम ये आकर हमारे लिए करेगा, तो हमें खुद अपने लिए स्टैंड लेना है।
1: और मैं यूथ को ये बोलना चाहूँगी कि हमेशा अपने एल्डर से एंड अपने जो भी डिवोशनल बिलीव्स हैं उनसे कनेक्टेड रहें, और आपके पैर हमेशा ग्राउंड पे होने चाहिए और आंखें हमेशा ऊपर आसमान की तरफ देखते रहिए, और हमेशा सपने लेते रहिए और उनके लिए काम करते रहिए।
0: जी, सपने देखना भी बहुत ज़रूरी है और उनके लिए काम करना भी बहुत ज़रूरी है। ज्योति और ऐश्वर्या, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दोनों यहाँ आए, हमारे श्रोताओं से रूबरू हुए, अपने बारे में आपने हमें बताया, हमारे श्रोताओं को बताया। मैं और रेडियो वितस्ता आप दोनों के कुशल भविष्य की कामना करता है। अब मुझे दीजिए इजाजत, अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे कुछ और नई कहानियाँ लेकर। अभी आपको छोड़े जा रही हूँ हमारे मेहमानों के पसंदीदा गीत के साथ, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुशियाँ बांटते रहे और सुनते रहे रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: जय हिंद, जय भारत।
2: जय हिंद, जय भारत।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी एक दर्पण एपिसोड 3। आज के मेहमान थे ऐश्वर्या धीमान और ज्योति बगन। प्रस्तुतकर्ता आरजे सेजल। रिकॉर्डिस्ट दीपक कुमार। निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।
1: सुनन खातर हरियाणवी सोंग, करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ऑन। सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो हम सफर भारत सोपोरी, लेके आया हूं आपके लिए आज एक और कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है भिखारी का दान, जिसको लिखा है सीहोर मध्य प्रदेश से धर्मराज देशराज जी ने। वर्मा जी सुबह सुबह घूमने के लिए अपने बंगले के बाहर निकले ही थे कि उनके दरवाजे के पास आकर एक लंगड़ा भिखारी गाने लगा, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। फिर उस लंगड़े भिखारी ने जोर से आवाज लगाई, सोने वालों जागो, घूमने जाओ, पढ़ाई करो, समय नष्ट मत करो, उठो जागो, समय बहुत कीमती है। ये सुनकर वर्मा जी ने उससे 10 का नोट दिया और पूछा, बाबा इस कॉलोनी में पहली बार आए हो, कहां के रहने वाले हो। तब भिखारी बोला, सर जी इसी शहर का निवासी हूँ, बस रोज कॉलोनी बदल बदल कर सुबह जल्द उठने का संदेश देता हूँ। लोग भिखारी समझकर रुपया पैसा दे देते हैं तो लेकर रख लेता हूँ और धर्म कार्य में लगा देता हूँ। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया और वर्मा जी घूमने के लिए निकल गए। 2-3 दिन बाद सुबह सुबह जब वर्मा जी घूमने के लिए निकल ही रहे थे, उनकी ससुराल से कॉल आ गया। जब बातचीत खत्म हुई तब वो अपनी पत्नी से बोले, मैडम आपकी माताजी का संदेश था, आपके पिताजी अचानक बहुत बीमार हो गए हैं, हमें इसी समय बुलाया है। ये सुनते ही उनकी पत्नी उठ खड़ी हुई। वर्मा जी ने अपना स्कूटर निकाला और 15-20 मिनट में ही वहां पहुंच गए। वर्मा जी ने अपनी ससुराल के दरवाजे पर पहुंचकर देखा, वही लंगड़ा भिखारी उस कॉलोनी में लोगों को जगा रहा है, जोर जोर से गीत गाकर जगाने की प्रेरणा दे रहा है। फिर वर्मा जी ने अपने ससुर का हाल जाना, तत्काल किसी नजदीकी नर्सिंग होम ले चलने का तय हुआ। 2-3 दिन बाद वर्मा जी दिल लगाकर प्राइवेट नर्सिंग होम में अपने ससुर की देखरेख में लगे रहे। एक दिन नर्सिंग होम के दरवाजे पर किसी महिला के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। वर्मा जी ने जाकर वहां तमाशाई एक व्यक्ति से पूछा, भाई क्या बात है। तब उसने कहा, इस महिला का कोई नजदीकी यहाँ मर गया है, लेकिन उसके मृत शरीर को नर्सिंग होम वाले दे नहीं रहे हैं। कहते हैं पहले यहाँ का बकाया रुपया जमा करो। तब वर्मा जी ने अपना रुमाल उस महिला के पास बिछा दिया और उस पर कुछ रुपए रख दिए। उनका अनुसरण करते हुए 2-3 लोगों ने भी रुपया वहां रख दिए। तभी वहां एक सूट बूट पहने एक व्यक्ति ने आकर आवाज लगाई, यहाँ का इंचार्ज कौन है, कितने रुपए बाकी हैं इन पर, जरा भी इंसानियत नहीं है। तब एक व्यक्ति ने आकर कहा, साहब जी कैश का इंचार्ज मैं हूँ, छोटा सा कर्मचारी हूँ यहाँ का, मुझे भी हिसाब देना होता है, इन पर पूरे 5,000 रुपए बाकी है। तब आए हुए व्यक्ति ने अपनी जेब से निकालकर 5,000 रुपए दिए और कहा, ये लो तुम्हारे रुपए और सुनो ऐसे किसी भी मजबूर को परेशान मत करना, जब भी ऐसी स्थिति आए मुझे बुलाकर रुपया ले लिया करो। फिर उस रोने वाली महिला के कुछ रुपये देकर वो जैसे ही आगे बढ़ा, वर्मा जी हाथ पकड़कर एक तरफ ले जाकर कहा, भाई आपको मैंने कहीं देखा है, क्या मुझे जानते हो। तब वो व्यक्ति बोला, जी मैं वही भिखारी हूँ जो रोज गली गली घूमकर जल्दी जागने और समय के सदउपयोग का संदेश देता हूँ। ये सुनकर वर्मा जी चौंक पड़े और बोले, लेकिन वो भिखारी तो लंगड़ा था। तब उस व्यक्ति ने अपने पैर में लगे नकली पैर को दिखाकर कहा, सर जी मुझे शुगर की बीमारी हो गई थी जिसकी मैंने उचित देखभाल नहीं की, अपनी लापरवाही के कारण मुझे अपने पैर के कुछ हिस्से को निकलवाना पड़ा, सर जी मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, अतः मैंने अपने जीवन को उद्देश्य पूर्ण बनाने के लिए रोज सुबह मांगता हूँ
अपनी जरूरत पूरी होने के बाद जो बचता है उसे धर्म के काम में लगा देता हूँ। अपने देश में बहुत से धनवान ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों रुपए फालतू पड़े हैं, लेकिन किसी गरीब की मदद करने को पाप समझते हैं। ये सुनकर वर्मा जी बोले, भाई आपके विचार जानकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ और आपको नमन करता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, इस कहानी का सार ये है कि आपके पास जितनी भी क्षमता है जरूरतमंद की मदद जरूर करें, जितना भी आप कर सकते हैं। और इसी सुविचार के साथ मैं आप सभी से लेता हूं विदा। किसी और कहानी के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो।
2: सब पर कृपा बरसाने, आपके दुखों को हरने।
3: हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर 2026 को दयालबाग के राजा पधारे हैं।
2: 14वां श्री गणेश महोत्सव दयालबाग नजदीक ब्रह्म कुमारी आश्रम अंबाला छावनी में। तो बप्पा का अलौकिक आशीर्वाद लेने के लिए और दिव्य महाआरती का हिस्सा जरूर बनिए।
3: रोजाना प्रातः 7 बजे एवं सायं 7 बजे
2: विशाल भंडारा 23 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे
3: और मूर्ति विसर्जन 25 सितंबर 2026 सायं 8 बजे
2: गणपति बप्पा मोरिया।

आवाज की दुनिया के दोस्तों को नरेश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता पर। आज मैं आपके लिए जिंदगी की हकीकत को दर्शाती हुई एक कविता लेकर आया हूं, और इस कविता के लेखक हैं श्री गोविंद सिंह चौधरी, जो गांव पिंडवाड़ा सिरोही राजस्थान के रहने वाले हैं। इनकी कोई भी रचना ऐसी नहीं होती जो सिर्फ कानों तक रह जाती हो। इनकी रचनाओं को मैंने जब जब पढ़ा है, इनकी सभी रचनाएं मेरे दिल की गहराइयों तक उतरती चली जाती हैं, और मैं मजबूर हो जाता हूं कि इनकी रचनाओं को आप तक जरूर भेजूं। आज इनकी जो रचना है, ये आने वाले कल की हकीकत है। ये रचना का शीर्षक है कथा या व्यथा। पानी फिरना क्या होता है, आज तुम्हें बतलाता हूं। तुम समझोगे कथा, मगर मैं व्यथा सुनाता हूं। रामू मुनिया दो बच्चों संग घर में खुशी से रहते थे। दोनों ठेले की कमाई से सुख दुख संग में सहते थे। खून पसीना एक कर बच्चों का मान बढ़ाया था। अपना पेट काट काट कर उनको खूब पढ़ाया था। रामू कहता, मुनिया तुझको साड़ी नहीं दिलवाऊंगा। मेरी कमीज को 4 बरस हुए, अब मैं नई सिलवाऊंगा। मुनिया कहती, एक साथ वो साड़ी 4 दिलवाएंगे। जब बच्चे जवान होंगे तुम्हारी कमीज सिलवाएंगे। जब उनकी शादी होगी मुझे सुख बहुत पहुंचाएंगे। तुमको भी अपनी गाड़ी में रोज घुमाने जाएंगे। फिर तो उनके बच्चे होंगे, पास हमारे आएंगे। हम दोनों तो बूढ़े होंगे, खूब उन्हें खिलाएंगे। मैं फिर घर की रानी बनकर खूब हुक्म चलाऊंगी। तुम गुमान ना करना, तुमको भी नचाऊंगी। हर गम हर दर्द भुलाकर दोनों सपनों में खोए थे। बच्चों की फीस भरने को कहां वो भरपूर नींद सोए थे। वक्त बदला जमाना बदला, दोनों बच्चे कामयाब हो गए। जैसे ही मेरी नौकरी माँ बाप को अकेला छोड़ गए। पहले नई नौकरी का बहाना, फिर कहा नहीं है ठिकाना। आगे आई व्यस्तता, फिर धीरे धीरे भूलते गए। खर्चा इतना है कि पैसे बचते नहीं, तुम्हें क्या भेजें। ये कहते गए, और उनके घर गाड़ी नाम सब बढ़ते गए। इधर दोनों के हाथ पैर आंख कान सब लगता है जाम है। पर आज भी बूढ़े रामू और मुनिया के पास वही पुराना काम है। बस अंतर इतना है कि अब हौले हौले वक्त आंखें मीच रहा है। पहले दोनों ठेला खींचते थे, अब ठेला उनको खींच रहा है। दोनों के अंदर एक वीरान जिंदगी बेआस दम तोड़ रही है। उनके नयन अनवरत झर रहे हैं, और आत्मा भी रो रही है। फटी साड़ी में रोती मुनिया देख रामू बोला, एक साड़ी दिला रहा था पर तुमने बात न मानी। सपनों के चक्कर में हवा की दिशा भी ना पहचानी।
अरे तुमने सपने न देखे होते तो उन्हें इतना ना पढ़ाते, तेरे लिए ओढ़नी और मेरे लिए कमीज सिलवाते। वो दोनों आज ठेला चला रहे होते, हम बूढ़े चैन से रोटी तो खा रहे होते। बच्चों से भरा पूरा परिवार होता, फिर ना आंख से झरते आंसू ना उम्मीदों पर पानी फिरता। जाने बच्चों को ये बात कब समझ आएगी, जिंदगी फिर एक दिन इतिहास को दोहराएगी। जो विदेश जाकर अपनों को भूल जाते हैं, वो बुढ़ापे में खुद को वृद्धाश्रम में ही पाते हैं। अगर ना संभले अभी तो वक्त जख्म कर जाएगा, आंखों में आंसू होंगे, सपनों पर पानी फिर जाएगा, सपनों पर पानी फिर जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

दोस्तों भोजन एफएम नमत अशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हूं भोजन रूजियो पनिन पसंदीदा बात।

सफर है फिल्मी गीतों का, तय करेंगे आप अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। नमस्कार, आदाब। सहर होते ही कोई हो गया रुखसत गले मिलकर, फसाने रात के कहती रही टूटी हुई चूड़ी।

जगता है अक्सर दिल के इस नाजुक कोने में, जहां कभी प्यार पलता था सिर्फ तुम्हारे लिए। जहां से तुम्हारा गुजर हुआ, वहां के रास्तों को तुमने महकाया, वहां की वीरानी को गुलजार किया, और वहां के फासलों को तुम्ही ने मिटाया। तुम्ही ने दर्द दिया और तुम्ही ने दवा। अब यहां हमारे तन्हाइयां पलती हैं, थाम लेती हैं रुसवाइयां दामन, और तुम्हारी याद में ये आंखें अश्कबार रहती हैं। जगता है दर्द अक्सर इस दिल के कोने में।

जिस्म से शिनासाई है। ये मखमली मौसम बेताब है तुम्हारे पैरों की चुभन के लिए। बदलते रुत सरगोशियां करती हवाएं, तुम्हारे दुपट्टे की खुशबू अब एहसास है मेरा। क्या तुम्हें याद है तपती दोपहरी के दामन में यहां की फिजाओं को इन पानियों में हम बहाया करते थे, इन सूफियाना धुनों में आवाज से आवाज मिलाना, यही हमारे

ये मौसम है तुम्हारी यादों का, सावन का ही महीना था जब तुम लौट आए थे नंगे पांव, भीग चुके थे तुम्हारे कप कपाते होंठ, चेहरे की रौनक और सादगी से भरा कदे आदम जिस्म, धड़कने उदासी में लिपटी हुई थी। शायद शायद अपना

मेरी पनाहगाहों में जो तुम ठहरती ता उम्र, शायद तुम्हारी यादों का मौसम खिल उठता मौसमी बहार की तरह।

तेरा ही होता है। इन पानियों में लहरें उठती तो हैं पर अक्स बिखरती नहीं। ये साहिल रहते हैं बेताब इन पानियों को छूने के लिए। यहां शाम होते होते मुरझा गए, अब ये भीगे मौसम और छिप गए चुप हो गए बुलबुल। इन काली खामोश घटाओं ने घेरा है सितारों को, चांद को, मेरी परछाई को और तुम्हारी मुस्कान को।

पेश है कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 2। आज का एपिसोड पेश करेंगे आरजे किरनी। आज बात करेंगे सदाबहार गायक मोहम्मद।

0: सभी श्रोताओं को मेरा यानी किरणी का नमस्कार। सुनहरे पल का एक और अंक लेकर हाजिर हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक महान वर्सटाइल गायक मोहम्मद रफी साहब के बारे में और सुनेंगे उनके गाए हुए गीत।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना।
0: मोहम्मद रफी का जन्म अमृतसर के पास कोटला सुल्तान में 24 दिसंबर 1924 को हुआ था। इसके बाद उनका परिवार 1932 में लाहौर चला गया। लाहौर में अपने होने वाले जीजा की मदद से रफी साहब मुंबई आए, जहां उन्होंने गायकी की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। रफी ने अपना पहला गाना श्याम सुंदर की फिल्म गाँव की गोरी के लिए गाया। इस गाने को उन्होंने जीएम दुरानी के साथ मिलकर गाया था। लोगों का मानना था कि मोहम्मद रफी की आवाज शमी कपूर पर सबसे ज्यादा फपती थी, लेकिन मोहम्मद रफी के पसंदीदा एक्टर शमी कपूर नहीं बल्कि राजेंद्र कुमार थे, जिनको टीवी पर देखते ही रफी मानो खो से जाते थे।

एक बार संजय गांधी किशोर कुमार से बेहद नाराज हो गए थे। उन्हें मनाने और किशोर कुमार को संजय गांधी के गुस्से से बचाने के लिए खुद मोहम्मद रफी ने खास तौर से संजय गांधी से मुलाकात की थी। रफी की गायकी के लिए मोहब्बत को इसी से समझा जा सकता है कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तब उस समय उनकी पहली पत्नी ने भारत में रुकने से मना कर दिया था। ऐसे में रफी ने ये फैसला किया कि वो अपने पहले प्यार यानी सिंगिंग के खातिर मुंबई में ही रुकेंगे, जिसके बाद वो अपनी पहली पत्नी से अलग हो गई।

मोहम्मद रफी पार्श्व गायक बन गए, पहचान भी हो गई, लेकिन अभी उनकी पहचान जनता को दीवाना बना दे ऐसे गायक की नहीं थी। ये मौका उन्हें संयोग से मिला। हुआ यूं कि फिल्म बेजू बावरा बन रही थी, संगीतकार नौशाद फिल्म के गाने तलत महमूद से गवाने वाले थे, लेकिन एक दिन उन्होंने तलत महमूद को सिगार पीते देख लिया। एक गायक सिगरेट पिए उन्हें ये पसंद नहीं था, सो उन्होंने रफी साहब को मौका दिया। बेजू बावरा के गीतों ने इतना तहलका मचाया कि मोहम्मद रफी रातों रात लोगों के चहेते गायक बन गए। रफी बहुत कम बोलने वाले, जरूरत से ज्यादा विनम्र और मीठे इंसान थे। शर्मीले इतने थे कि रफी साहब ने कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया। उनके सभी इंटरव्यू उनके बड़े भाई अब्दुल अमीन हैंडल करते थे। कहते हैं कि रफी ने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ दो इंटरव्यू दिए थे।

वैसे तो रफी साहब के प्रति लोगों में दीवानगी के कई किस्से मशहूर है, लेकिन ये किस्सा नौशाद साहब ने खुद सुनाया था। हुआ यूं कि एक बार एक अपराधी को फांसी दी जा रही थी, उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई, तो उसने न तो अपने परिवार से मिलने की इच्छा जताई और न ही किसी खास खाने की फरमाइश की। उसने कहा कि वो मरने से पहले रफी का बेजू बावरा फिल्म का गाना ए दुनिया के रखवाले सुनना चाहता है। इस पर एक टेप रिकॉर्डर लाया गया और उसके लिए वो गाना बजाया गया। वैसे बता दे कि इस गाने के लिए मोहम्मद रफी ने 15 दिनों तक रियाज किया और रिकॉर्डिंग के बाद उनकी आवाज इस हद तक टूट गई थी कि कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि रफी शायद कभी अपनी आवाज वापस नहीं पा सकेंगे।

के लिए रफी साहब को नेशनल अवार्ड मिला था। इस गीत को गाते समय कई बार उनकी आंखें नम हो गई थी और इसकी वजह ये थी कि इस गीत को रिकॉर्ड करने से एक दिन पहले ही उनकी बेटी की सगाई हुई थी और कुछ दिनों में शादी थी, इसलिए वो काफी भावुक थे। फिर भी उन्होंने ये गीत गाया और इस गीत के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला।

हिंदी सिनेमा को अनगिनत नगमे देने वाले महान गायक मोहम्मद रफी जब अपने करियर के शिखर पर थे तो सिर्फ मौलवियों के कहने पर फिल्मों में गाना बंद कर दिया था। दरअसल रफी हज करने गए थे और मौलवियों का कहना था कि हाजी होने के बाद गाना बजाना बंद कर देना चाहिए। रफी के मन में भी ये बात बैठ गई। हज से लौटकर कई महीने गुजर गए और रफी ने कोई गाना रिकॉर्ड नहीं किया। बाद में नौशाद साहब ने उन्हें बहुत समझाया और रफी के बेटू ने भी गाना शुरू करने की सलाह दी। तब जाकर उनका मन बदला और दोबारा गाना शुरू किया।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। रफी साहब को पब्लिसिटी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो जब भी किसी शादी में जाते थे तो ड्राइवर से कहते थे कि यहीं खड़े रहो। रफी सीधे कपल के पास जाकर उन्हें बधाई देते थे और फिर अपनी कार में आ जाते थे। वो जरा देर भी शादी में नहीं रुकते थे। मोहम्मद रफी बहुत ही शर्मीले स्वभाव के इंसान थे। न किसी से ज्यादा बातचीत और ना ही किसी से कोई लेना देना। न शराब पीते थे, ना ही सिगरेट पीते थे। पार्टियों का शौक भी नहीं था, ना ही देर रात घर से बाहर रहने की आदत। संकोची तो इतने थे कि वो कभी भी संगीतकार से ये नहीं पूछते थे कि उन्हें गाने के लिए कितना पैसा मिलेगा। बस वे आकर गीत गा दिया करते थे और कभी कभी तो एक रुपया लेकर गीत गा दिया करते थे।

रफी साहब न सिर्फ बहुत अच्छे गायक थे पर बेहद उम्दा इंसान भी थे, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि वह इंसान बड़े थे या कलाकार। मोहम्मद रफी ने अपनी जिंदगी में करीब 26,000 गीत गाए और लगभग हर भाषा में। वर्ष 1946 में फिल्म अनमोल गढ़ी में तेरा खिलौना टूटा से हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चाहे किशोर प्रेम का अलहड़पन हो, दिल टूटने का दर्द हो, प्रेमिका से इजहार मोहब्बत हो या सिर्फ उसके हुस्न के तारीफ, मोहम्मद रफी का कोई सानी नहीं था। मोहब्बत ही नहीं, इंसानी जज्बात के जितने भी पहलू हो सकते हैं, दुख, खुशी, आस्था या देशभक्ति या फिर गायकी का कोई भी रूप हो, भजन, कवाली, लोक गीत, शास्त्रीय संगीत या गजल, मोहम्मद रफी ने गायकी में सभी भावनाओं को बखूबी निभाया। ये सच है कि मोहम्मद रफी साहब जैसा फनकार न कभी हुआ है और न कभी होगा।

उत्तर भारत में कोई बारात नागिन डांस के बिना नहीं निकलती, लेकिन ये भी सच है कि बारात में आज मेरे यार की शादी है भी अनिवार्य रूप से गाया जाता है। आदमी सड़क का फिल्म का ये गीत रफी साहब ने गाया है। उनका एक और गीत जात पात और धर्म का भेद किए बिना बारातों में खूब गाया जाता है। ये गाना दोस्ती की तरफ से नए दुल्हे की शान में कसीदे पढ़ने के अंदाज से गाया जाता है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देशभक्ति के गीत का इस्तेमाल जिसने भी दुल्हे के लिए पहली बार किया था उसे 100 तोपों की सलामी। एक और किस्सा अमिताभ से सुनिए। 2 दिन का कार्यक्रम था। पहले दिन रफी साहब गा चुके थे। दूसरे दिन सुबह हमें पता चला कि आज जिन गायक का प्रोग्राम है वो नहीं आ रहे हैं। रफी साहब एयरपोर्ट जा चुके थे। हम लोगों ने एयरपोर्ट की ओर दौड़ लगाई। प्लेन उड़ने ही वाला था। एयरपोर्ट अथॉरिटी से निवेदन करके प्लेन में पहुंचे और रफी साहब को समस्या बताई। रफी साहब बिना कुछ कहे तत्काल हमारे साथ नीचे उतर आए। इस तरह हम परेशानी में फंसने से बच गए। बता दे, रफी साहब को अमिताभ की दीवार बहुत पसंद थी।

उन्होंने हर बड़े संगीतकार के साथ सुर मिलाए। अपने दौर के हर बड़े छोटे कलाकारों के लिए पर्दे के पीछे से आवाज दी। उनकी आवाज में वैरायटी थी, मधुरता थी ही, इसके अलावा उन्हें पार्श्व गायन की तकनीकी गहरी समझ थी। इसी के चलते वो कलाकारों की आवाज के हिसाब से अपनी आवाज को मॉड्यूलेट कर लेते थे। उनका गाना सुनने भर से ही पता चल जाता था कि पर्दे पर कौन कलाकार इसे साकार कर रहा है। हीरो की आवाज से आवाज मिलाने में उनका कोई सानी नहीं था। रफी साहब तीसरी मंजिल का गीत ओ हसीना जुल्फों वाली में ड्रम का कमाल है। हम किसी से कम नहीं, मैं चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम में गिटार की रिदम है। रफी को वर्सटाइल सिंगर ऐसे ही नहीं कहा जाता। पद्मश्री से नवाजे गए मोहम्मद रफी को अनेक बार फिल्म फेयर अवार्ड मिले। उनके गानों की लिस्ट देना यहाँ संभव नहीं। उन्होंने 26,000 से ज्यादा गीत गाए हैं, सोलो भी और ड्यूट भी।

मोहम्मद रफी का निधन 31 जुलाई 1980 को हार्ट अटैक आने से हुआ था। मृत्यु से बस कुछ घंटे पहले ही रफी एक गाने की रिकॉर्डिंग करके आई थी। ये गाना था फिल्म आसपास का, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, तो कहीं आसपास है दोस्त। मोहम्मद रफी का निधन रमजान के महीने में हुआ था। जिस दिन उनकी अंतिम विदाई थी उस दिन मुंबई में जोरों की बारिश हो रही थी, फिर भी अंतिम यात्रा में हजारों लोग सड़कों पर थे और सबने नम आंखों से अपने इस पसंदीदा गायक को विदाई दी। रफी साहब के निधन पर भारत सरकार द्वारा 2 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया था। उनके निधन के बाद संगीतकार नौशाद ने कहा था, कहता है कोई दिल गया, दिल भर चला गया, साहिल पुकारता है समंदर चला गया, लेकिन जो बात सच है वो कहता नहीं कोई, दुनिया से मौसीकी का पैगंबर।

बेताज बादशाह मोहम्मद रफी के बारे में जितना कहा जाए, जितना बोला जाए, उतना ही कम है। उनकी आवाज उनके गानों की तरह ही अमर हो गई। इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। और जाने से पहले मोहम्मद रफी की गाई हुई दो लाइनें मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे।

कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 2। आज का कार्यक्रम आधारित था सदाबहार गायक मोहम्मद रफी साहब पर। प्रस्तुत किया आरजे किरली ने। रिकॉर्ड एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता की पेशकश।

0: सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर। हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।
1: You are listening 90.0 FM, Radio Vitasta, हम सफर जिंदगी का।

0: पिता होना सिर्फ बच्चे को हाथों में उठाने की भावना को ही नहीं कहा जा सकता, उसके साथ उस नन्ही जान को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं पिता होने का अनुभव महसूस करवाती है। पहले जो खुद की खुशी के लिए किया जाता था, वो अब किसी और के चेहरे की मुस्कान के लिए करना ही पिता होने की अनुभूति है।
1: पिता बच्चों का सुरक्षा कवच है, इसलिए कठोर तो होना ही होगा उन्हें। यही उनकी प्रकृति बच्चों को हर मुश्किल पल और कठिनाइयों से निकलना सिखा देती है। पिता की चुप्पी व्यवहारिक सलाहों और सख्ती के पीछे छुपे नाजुक भाव और सलाह समझना जीवन को समझना है।
0: कहा जाता है पिता कभी भावुक नहीं होते, लेकिन जब बात बच्चों को अपने से दूर भेजने की आती है तो एक माँ की तरह उनकी भी आंखें नम होती हैं। लेकिन पिता अपने बच्चों के हित में बहुत दूर की सोचते हुए ना सिर्फ अपनी आंखों से उन्हें दूर भेजते हैं, बल्कि भविष्य के लिए संपूर्ण योजनाएं करते हुए पूरे परिवार को भी तैयार कर लेते हैं।
1: यूं ही ये बातें जारी रहेंगी। सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर फादर्स डे स्पेशल।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता पर फादर्स डे स्पेशल प्रोग्राम। कोशिश तो हमारे इस कार्यक्रम के जरिए यही थी कि सभी फादर्स के लिए ये दिन खास बनाया जाए। उम्मीद करते हैं कि इस कोशिश पर हम खरे उतरे होंगे।
1: वैसे जैसे जैसे समय बदला है, वैसे वैसे पिता और बच्चे का रिश्ता भी बदलते देखा है। जहाँ पहले बच्चे पिताजी कहकर पुकारते थे या बाबूजी, वहीं फिर पापा कहकर पुकारने लगे और फिर डैडी।
0: हाँ, पहले समय में बच्चे तो पिता के सामने आने से भी कतराते थे, लेकिन आज के समय में ये रिश्ता थोड़ा बदला है और आज बच्चे अपने पिता से खुल कर बात कर पाते हैं। और एक उम्र के बाद फादर्स भी अब बच्चों से फ्रेंडली बिहेवियर रखने की कोशिश करते हैं।
1: बदलते दौर के साथ सब बदलता है, जीने का तरीका, बात कहने का तरीका और बदलती टेक्नोलॉजी के साथ सोच का बदलना भी जरूरी है। शायद इसलिए पिता अब स्ट्रिक्ट थोड़े कम और फ्रेंडली ज्यादा होने लगे हैं, ताकि इस जनरेशनल गैप को पूरा कर सके, या कह लीजिए बीच के फासले को हटा सके।
0: करते रहेंगे इस दौर की और फादर्स डे स्पेशल में हमारे प्यारे फादर्स की बातें। तब तक के लिए आप सुनिए ये प्यारा संगीत।

0: पिता की रोक टोक कहीं न कहीं हमें हमेशा बेवजह लगती है, लेकिन वही रोक टोक हमें आगे चलकर अनुशासन यानी डिसिप्लिन में रहना सिखाती है और गलत रास्ते पर भटकने से बचाती है।
1: वो पिता ही होता है जो धूप में खड़े होकर कई बार घर बनवाता है ताकि परिवार को ठंडी छांव मिल सके। पिता के निर्णय कई बार कठोर होते हैं, लेकिन यह भी सच है कि अक्सर कड़े बड़े फैसले लेने के लिए जब कुछ त्याग और समर्पण का अवसर आता है तो पिता ही एक मुखिया के तौर पर अपना दायित्व भी निभाते हैं।
0: हर मुश्किल को वो आसान बना देते हैं, जब लड़खड़ाएं तो अपना हाथ थमा देते हैं, जब भीड़ में नजर ना आए कुछ तो कंधे पे उठा लेते हैं, जब किसी सवाल का ना मिलता हो जवाब तो जवाब बन खुद आ जाते हैं, पापा सुपर हीरो की तरह हर मुश्किल से बचाने के लिए आगे आ जाते हैं। इसलिए एक थैंक यू तो बनता है पापा के नाम।
1: अब हमें दे इजाजत, अब आ गया है वक्त इस कार्यक्रम को यहीं विराम देने का। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी और कार्यक्रम में कुछ और अनकही बातों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहे FM 90.0 MHz रेडियो विद अस्था, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: काली काली घटा।
1: सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं ठाकुर वर्मा।
2: और मैं हूं विकास शर्मा।
1: आज हम एक गाना सजना रिलीज कर रहे हैं रेड प्रो एंटरटेनमेंट की ओर से, जिसको अपने सुरों से सजाया है विपन कुमार ने,
2: संगीत से सजाया है रिएक्स ने,
1: निर्माता है विकास शर्मा
2: और निर्देशित किया है ठाकुर वर्मा ने।
1: ये गीत हम FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के श्रोताओं के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अमूल्य है। प्रस्तुत है ये गीत सजना।
3: Your reaction.

मैं हूं वंश शर्मा, सिंगर सॉन्ग राइटर एंड कंपोजर। मेरा एक नया गाना नए साल के आगमन पर रिलीज हुआ है और ये सॉन्ग मैं FM 90.0 रेडियो वितास्ता के श्रोताओं के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है आपको ये सॉन्ग पसंद आएगा और आपका स्नेह और प्यार मुझे मिलेगा। और इस गाने में संगीत दिया है आरवी ने।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते।

एक ये दिन है तू जाके सारी सारी रतियां बन गई गोरी चकोरी, ओए क्या बात।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: हाँ जी।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

0: छोड़ो
1: देखा दिल न तोड़ो
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ सम

0: रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

0: कि सबकी यारी मेरा दिल जलाना।
1: यू आर लिसनिंग FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। अंबाला कैंट्स फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो, लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
2: तुझु बोजान FM 90.0 रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी हुन। बोजान रूजियो पनिन पसंदीद बगत।
3: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो।
4: कर दिया मेरे ते जो सर्दियां तेरे नाल फुटवा कराउन जो
3: रेडियो वितस्ता
4: असले पौन पटाके सुन मेरे दिलदार
3: 90.0 मेगा।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण, सुनते रहिए दिल से।
2: हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिया नूं। शब्द ने कमाईया ते इस शब्द नूं आवाज दित्ती है सिंगर बॉबी सिंह जी ने, ते लिखिया है सुरिंदर सरताज जी ने, ते इस शब्द की वीडियो जे एस कलवाना जी ने की है। इस वीडियो च काम करन वाले कलाकार पुनीत खन्ना जी, हरदयाल चंद जी, इंदर राजोसन जी, निर्वैर चहल जी ते होर कलाकार। ते इस शब्द नूं प्रोड्यूस किया है हरबंस लाल खन्ना जी ने, ते तुसीं इस शब्द की वीडियो भी देख सकते हो नानक गुरबाणी 20 यूट्यूब चैनल ते जाके। शब्द का आनंद माणो ते सब नूं शेयर करो। थैंक यू सो मच।

योसा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर।

0: सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: 1857 वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसकी शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है, और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरे, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है, और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हों तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अंबाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अंबाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अंबाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार।

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में बड़े ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। यह उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पर गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडहरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन

0: एक ही तलच में, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: تُہۍ چھُو بوزان 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔
1: آنکھوں میں

और सुनाइए रेडियो विविधता, सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
1: घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो।
2: सब पर कृपा बरसाने, आपके दुखों को हरने।
3: हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर 2026 को दयालबाग के राजा पधार रहे हैं।
2: चौदवा श्री गणेश महोत्सव दयालबाग नजदीक ब्रह्म कुमारी आश्रम अम्बाला छावनी में। तो पप्पा का अलौकिक आशीर्वाद लेने के लिए और दिव्य महाआरती का हिस्सा जरूर बनिए।
3: रोजाना प्रातः 7 बजे एवं साय 7 बजे
2: विशाल भंडारा 23 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे
3: और मूर्ति विसर्जन 25 सितंबर 2026 साय 8 बजे
2: गणपति बप्पा मोरिया।

0: में गुली संगीत की तान लाते हैं, हम आपके लिए खुशियों का मकान लाते हैं। सिर्फ नगमे सुनाना मकसद नहीं है हमारा, हम तो लफ्जों में पिरोकर आपकी मुस्कान लाते हैं।
1: रेडियो की ये तरंगे सिर्फ आवाज नहीं पहुंचाती, दिल से दिल के फासलों को पल में मिटाती है। आपकी हर एक फरमाइश हमारे लिए बेहद खास है, क्योंकि ये हमें आपसे और आपको अपनों से मिलाती है। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे श्रोताओं का। मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरजे किरणी।
0: और मैं हूँ आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के सभी चाहने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, घड़ी में बज चुके हैं दिन के 2 बजे और आज है शुक्रवार और हम लेकर आए हैं आपका अपना मनपसंद शो
1: आपकी फरमाइश। भारत जी, मुझे आपकी फरमाइश शो की सबसे खास बात ये लगती है कि यहाँ रेडियो वितस्ता के मंच पर हम सिर्फ गाने नहीं बजाते।
0: बिल्कुल सही कहा किरण जी, गाने तो सिर्फ एक जरिया है, असल में तो हम यहाँ आपकी भावनाएं, आपकी उम्मीदें और आपका असीम प्यार अपने तमाम श्रोताओं तक पहुँचाते हैं।
1: सच में रेडियो की ये अनदेखी तरंगे ही तो है जो फरमाइशों के रूप में हम सभी को एक दूसरे से कसकर जोड़े रखते हैं। ये कार्यक्रम तो सीधे दिल से दिल की राह को जोड़ने का एक बहुत ही खूबसूरत माध्यम है।
0: और सच बताऊं तो दोस्तों, हमें हर पल आपकी फरमाइशों का बेसब्री से इंतजार रहता है। हमारी पूरी टीम हमेशा इस बात के लिए उत्सुक रहती है कि कब आपकी पसंद का गाना हम बजाएं, आपके संदेश पढ़े और आपके अपनों तक आपकी भावनाएं पहुंचाएं।
1: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, जहां आपकी एक फरमाइश बन जाती है किसी और के चेहरे की मुस्कान। रेडियो वितस्ता की ये तरंगे जो जोड़े दिल से दिल की राह, सिर्फ आपकी फरमाइश पर। इंतजार की घड़ियां हुई खत्म, क्योंकि ये शो है सिर्फ और सिर्फ आपका।
0: सुनों का सफर और आपका साथ, आपकी फरमाइश में आज फिर होगी सीधे आपके दिल की बात। आपकी भावनाएं, आपकी उम्मीदें और आपका प्यार हमें लाते हैं सीधे आपके दिल तक। 90.0 FM पर संगीत का असली मजा आपके अपनों के नाम। सुनते रहिए आपकी फरमाइश सिर्फ रेडियो वितस्ता 90.0 MHz पर।
1: तो फिर देर किस बात की, दिल के तार छेड़िए, अपनी पसंद के गीतों को सुनने के लिए तैयार रहिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की फरमाइशों का ये सुहाना सफर। पहली फरमाइश आई है पिंड तेजा मोड़ी अम्बाला से। भेजने वाले श्रोता है बंशीलाल संधू, कबीर संधू, जसबीर संधू, वरनीत कौर संधू, पवनीत कौर संधू और सारा संधू परिवार। ये सुनना चाहते हैं फिल्म इज्जत का गाना, जिसके बोल है ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, और इस गाने को अपनी खूबसूरत आवाज में सजाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। लीजिए पेश है इनका पसंदीदा नगमा।

श्रोताओं लेते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। भेजे वाले श्रोता है पी एस नाहवकर, ये सुनना चाहते हैं फिल्म जानवर से गीत। गीत के बोल है मेरी मोहब्बत जमा रहेगी। इस गीत को अपनी शुरू से सजाया है मोहम्मद रफी ने। पी एस नाहवकर के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है निर्मला नाहवकर, विशाल नाहवकर और साथ ही मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान दाइडे, आशीष मुरहेकर। आइए सुनते हैं इन सभी का ये मनपसंद गीत।

रेडियो की सुरीली तरंगों पर अगली फरमाइश हमारे पास आई है महेश नगर अम्बाला कैंट से। भेजने वाले श्रोता है मंगत राम। ये सुनना चाहते हैं फिल्म काजल का गीत, जिसके बोल है छू लेने दे नाजुक होठों को, और इस गाने को अपनी आवाज में सजाया है मोहम्मद रफी ने। लीजिए पेश है इन श्रोता का ये पसंदीदा गीत।

श्रोताओं प्रस्तुत करता हूं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है चंद्रू नगर भवियाल अंदाला छावनी से। भेजने वाले श्रोता है मदन गोपाल सैनी। ये सुनना चाहते हैं फिल्म कागज की नाव से गीत। गीत के बोल है हर जन्म में हमारा मिलन। इस गीत को आवाज दी है मनहर उदास और आशा भोसले ने। आइए प्रस्तुत है इनका ये

संगीत के इस खूबसूरत सफर में अगली फरमाइश है फिल्म नाइट इन लंदन के गीत की, जिसके बोल हैं बाग में फूल किसने खिलाए हैं, और इस गाने को आवाज दी है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने, और इस गाने की हमारे पास फरमाइश आई है धनोरी तेली वाला उत्तराखंड से। भेजने वाले श्रोता है निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू। लीजिए पेश है इनका ये पसंदीदा।

चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो हमारे पास आई है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से। भेजने वाले श्रोता है रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल। ये सभी श्रोता सुनना चाहते फिल्म आशा का गीत, जिसके बोल है जाने हम सड़क के लोगों से महलों वाले क्यों जलते हैं। इस गाने को अपनी आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। लीजिए पेश है ये खास फरमाइश।

दोस्तों आपको सुनाते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है गांव जुगुड़ी जिला यमुनानगर से। भेजने वाले श्रोता हैं रणधीर बांगर। ये सुनना चाहते हैं फिल्म ब्लैक मेल से गीत। गीत के बोल है पल पल दिल के पास तुम रहती हो। इस गीत को अपनी आवाज से सजाया है किशोर कुमार ने। रणधीर बांगर के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है गुरमेजो, गौरव, प्रवीण, युगम और वीरेन। आइए सुनते हैं इनका ये पसंदीदा नगमा।

0: अगली फरमाइश हमारे पास आई है अनोखी अदा फिल्म का गीत जिसके बोल है हाल क्या है दिलों का। इस गाने को अपनी आवाज दी है किशोर कुमार ने और ये फरमाइश हमारे पास आई है अंबाला कैंट दयालबाग से और भेजने वाले श्रोता है हनी और अनिल। लीजिए पेश है इनकी पसंदीदा फरमाइश।
1: हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम आपका।

आपने ट्यूनिंग किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का आपके जीवन का प्रवाह। जारी है कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जहां हम बजाते हैं वो गाने जिसकी फरमाइश आप करते हैं। अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप भी अपनी किसी भी पुरानी हिंदी फिल्म के गीत, हरियाणवी या पंजाबी गीत की फरमाइश कर सकते हैं हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर। आपको लिखना होगा अपना नाम, अपने दोस्तों का नाम और गीत के बोल। हमारे स्टूडियो का नंबर आप नोट करें, 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। हमें आपकी फरमाइशों का इंतजार रहेगा। इसके साथ ही लेते हैं हम एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है अंबाला छावनी से। भेजे वाली श्रोता है अमिता बत्रा, शनाया और तनुष, ये तीनों अपनी माँ मिसेज सुदेश बत्रा को एक गाना डेडिकेट करना चाहते हैं जो फिल्म चिराग से है। गीत के बोल है तेरी आंखों के सिवा। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। आइए सुनते हैं ये फरमाइशी।

अगली फरमाइश आई हमारे पास फिल्म प्रेम पर्वत से। गाने के बोल है ये दिल और उनकी निगाहों के साए, और गाने को अपनी आवाज से सजाया है लता मंगेशकर ने। इस गाने को पसंद करने वाली श्रोता है मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार। लीजिए पेश है इन सब का पसंदीदा गीत।

श्रोताओं, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। लेते हैं आज के आपकी फरमाइश कार्यक्रम की आखिरी फरमाइश, जो हमारे पास आई है समस्तीपुर बिहार से। भेजने वाली सखियां हैं मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से, सोनम सिंह और अनामिका सिंह। ये सभी सखियां सुनना चाहती है फिल्म कामचोर से गीत। गीत के बोल है, तुझ संग प्रीत लगाई है सज।

0: बिना बस यही दो पंक्तियाँ। सुरों का ये सफर यूं ही सुहाना रहे, हर पल आपके होठों पर कोई नगमा पुराना रहे। मिलेंगे फिर नई फरमाइशों की मिठास लेकर, तब तक हर लम्हा आपकी जिंदगी में मुस्कुराता रहे। अब अपनी रेडियो दोस्त को दीजिए इजाजत, मुस्कुराते रहे, अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहे आपका अपना पसंदीदा रेडियो FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।
1: और श्रोताओं, मेरा भी बहुत सारा प्यार, और मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
2: You are listening 90.0 FM Radio Vitasta Hum Safar Zindagi Ka, a community radio licensed by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अम्बाला तक पहुँचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अम्बाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010
2: पर। वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

0: 90.0 FM पर सामाईन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: यू आर लिस्निंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
2: यू आर लिस्निंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी, अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरे, याद रखिएगा, यह सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ, अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हों तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अम्बाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अम्बाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अम्बाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अम्बाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अम्बाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अम्बाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अम्बाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अम्बाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अम्बाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अम्बाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार रहे।

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में बड़े ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडहरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरत्व की माटी दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार।

0: अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता है।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: शुक्रिया करम मेहरबानी दोस्तों, जिंदगी हसीन है।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विस्तार। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अंबा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अंबा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व।

0: 1857 वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में होगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ, अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हो तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अम्बाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अम्बाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार रहे।

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। यह उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक, 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक। ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

0: कृपा बरसाने, आपके दुखों को हरने।
1: हर साल की तरह इस बार भी 14 सितंबर 2026 को दयालबाग के राजा पधार रहे हैं।
0: 14वां श्री गणेश महोत्सव दयालबाग नजदीक ब्रह्म कुमारी आश्रम अंबाला छावनी में। तो पप्पा का अलौकिक आशीर्वाद लेने के लिए और दिव्य महाआरती का हिस्सा जरूर बनिए।
1: रोजाना प्रातः 7 बजे एवं सायं 7 बजे
0: विशाल भंडारा 23 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे
1: और मूर्ति विसर्जन 25 सितंबर 2026 सायं 8 बजे
0: गणपति बप्पा मोरिया।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।
1: ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सब

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

कल रात एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों में मेरी गुनगुना रही थी। फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आंख मिचौली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे के बाद आया मुझे करार, वो सहलाकर मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों है खफा एक दूसरे से, मैं उसे और वो मुझे समझा रही थी। मैंने जिंदगी से पूछा, क्यों इतना दर्द दिया तूने? वो हंसी और बोली, मैं जिंदगी हूं पगले, तुझे जीना सिखा रही थी। सुकून मौसीकी में आप सभी का स्वागत है, और मौसीकी के इस दौर के बीच में आज के सफर में मैं हूं आपका रेडियो दोस्त नरेश शर्मा। ये मान लेना कि आगे क्या होगा, यही तो जिंदगी है। लेकिन जो भी होगा मैं उसके लिए तैयार हूं, क्योंकि उतार चढ़ाव ही तो जिंदगी है। और हां, जिंदगी कभी एक जैसी तो नहीं रहती, कभी रुकती है पल भर को, तो कभी चलना शुरू कर देती है। क्योंकि एक जगह पर खड़ा हुआ तो पानी भी सड़ जाता है।

इसी तरह से इंसान की जिंदगी के बीच में कभी खुशी आती है, कभी गम आते हैं। दिन है तो रात भी होती है, अंधेरे हैं सुबह के उजाले भी नसीब होते हैं। लेकिन कभी कभी वो दो लोग जो एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले, जीने और मरने की कसमें खाया करते थे, उनके ऊपर ऐसा वक्त भी आता है कि अपनी आवाज, अपनी बात अपने महबूब तक पहुंचाने के लिए उनको नगमों का सहारा लेना पड़ता।

मोहब्बत तो अपने आप में एक सरमाया है, ये सबको नसीब नहीं होती। कुछ ऐसे खास किस्मत वाले होते हैं जिनको ऊपर वाले ने इस खास नेमत से नवाजा होता है। ये दौलत है, मोहब्बत सुकून है, मोहब्बत लक्ष्मी है, और लक्ष्मी से किसे प्यार नहीं होता। यूं ही हर कोई नहीं कहता कि मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी।

और जब किसी भी वजह से जो प्यार करने वाले बिछड़ जाते हैं ना, तो फिर इनका दिल इस दुनिया में तो नहीं लगता, क्योंकि इनकी तो दुनिया ही एक दूसरे के साथ ही होती है। ये तो एक दूसरे से जुदा होकर रहने का सोच भी नहीं सकते। बिछड़ गए तो ये दिल लगेगा नहीं, लगेगा कि लगने लगा है पर लगेगा नहीं, और जो आवाज फिजाओं के बीच में गूंजेगी वो यही होगी, ये दिल तुम बिन कहीं।

एक नामुराद बीमारी सी है ये मोहब्बत, फिर भी खींचती है अपनी तरफ और ना चाहते हुए भी आदमी प्यार के समंदर के बीच में डूबता चला जाता है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो खुद ही ये कह बैठता है कि मैं इस दलदल में क्यों फंसा, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं।

झरने की आवाज, जो पानी की आवाज है ना झरनों के बीच में से आती है, कई बार वो आवाज भी अपने महबूब के पांव में बची हुई पाजेब की झंझनाहट सी महसूस होती है और टप टप टप कर गिरती ये बारिश की बूंदें, ये भी अपने आप में मौसीकी का एक वो अंदाज लेकर चलती हैं जिससे सुकून मिलता है और महबूब अपने दिल की बात अपने दिलबर तक पहुंचाने के लिए आवाज देता है, तुझको पुकारे मेरा प्यार।

कितनी भी आवाज दो, लेकिन दुनिया की रस्म रिवाज बेबस कर ही देती है कि वो आवाज महबूब तक ना पहुंचे। न जाने कौन सी शिकायतों का शिकार हो गए हम, जितना दिल साफ रखा उतने ही गुनहगार हो गए हम। आवाज दे के हमें न तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ।

और जब बहुत यत्न करने के बाद भी मुलाकात नहीं हो पाती तो ऐसा लगता है कि ये दुनिया बेकार है। महबूब के बिना इस दुनिया के बीच में मेरा कोई भी अपना नहीं है। जिंदगी से नफरत सी होने लगती है। चार दिन की जिंदगी में मैं किससे कतरा के चलूं? खाक हूं मैं, क्या खाक पे इतरा के चलूं? दिल की आवाज सिर्फ इतना ही कह पाती है कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं।

एक फकीर ने जिंदगी की क्या खूब मिसाल दी, मुट्ठी भरी रेत की और हवा में उछाल दी। लेकिन महबूब ने जो भेजा वो फूल नहीं, एक खत था और फूल की शक्ल में दिल के सारे अल्फाज उसमें बयां हो रहे थे। फूल, तुम्हें भेजा है खत में फूल नहीं, मेरा दिल है।

ये कायनात, ये दुनिया, ये आबो हवा, ये पहाड़ों की खूबसूरत वादियां, ये तैरते हुए बादल, ये अपना अफसाना कहती हुई खूबसूरत हवाएं, कई बार ऐसा मदमस्त माहौल बना देती हैं कि इंसान तो क्या बादलों के लिए भी कहना पड़ जाता है, दीवाना हुआ बादल। आइए आप भी सुकून मौसीकी के इस रवानगी के बीच में अपने आप को बहा लें। यही वक्त है, यही मौका है, तो इंतजार किस बात।

बांसुरी की तरह है जिंदगी। इसमें बहुत से छेद रूपी बाधाएं हैं और जिसको इसे बजाना आ गया ना, उसे जिंदगी जीना आ गया। बांध कर मुझसे उड़ने को कहता है, मेरा कातिल ही मुझे जीने को कहता है। हर कदम देता रहा जो मुझको धोखा, बेवफा दोस्त वफा करने को कहता है। किससे करें फरियाद इंसाफ के लिए, मुझे लूटने वाला ही मेरे घर में रहता है। ना कर तजवीज तो मुझसे मोहब्बत की, मेरे दिल में अरसे से एक बेमुरब्बत रहता है। फिर भी अगर मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया होता।

सोचता हूं कि ऊपर वाले ने इतनी बड़ी दुनिया के बीच में तो ऐसे शख्स क्यों आना है जो सिर्फ और सिर्फ एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा देखते हैं। एक को चोट लगती है तो दर्द दूसरे को होता है। शायद यही मोहब्बत है। बेशक ना मिल पाए हूं, अलग अलग हूं, लेकिन फिर भी कभी कभी दिल में यह ख्याल तो आता है कि तुझको बनाया गया है मेरे लिए।

वायदा खिलाफी तो अक्सर मोहब्बत के बीच में देखी और सुनी जाती है, जिसे बेवफाई का नाम दिया गया है। बहुत वायदे कर लिए जाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ एक ही वायदे हैं जो पूरे हो जाते हैं। इसीलिए कहता हूं, जो है उसी से शुरू करें, जहां है वहीं से शुरू करें, और अगर खास मौके के इंतजार में रहे ना, तो इन खास मौकों के इंतजार में करोड़ों सपनों को बर्बाद किया है। जो वायदा किया है उसको अभी ही निभा लें, आने वाला कल पता नहीं एक पल भी आपको देगा या नहीं देगा।

हसीन मौसम हो, खूबसूरत फिजाएं हो और महबूब का साथ, तो मरुस्थल के बीच में भी बाहर सी लगती है। तू जो मिल जाए तो खुशियों का रेला कर दे, गम के मरुस्थल में बरसात का ढीला कर दे। याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, याद तो वो है

मेले में भी अकेला कर दे और ऐसे हसीन खूबसूरत आशिकाना मौसम के बीच में क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ किसी अपने का साथ, किसी अपने का अंदाज, ताकि दोनों ही मिलकर कह सके कि मौसम आशिकाना है।

बरसती हुई बारिश और रोती हुई आंखों का एहसास उन्हीं को होता है जिनके घर कच्चे हों और दिल नाजुक। और बहुत सी उलझनों का जवाब यही है कि मैं अपनी जगह सही हूं, वो अपनी जगह सही है। तो दोस्तों, क्या है ये जिंदगी? जिंदगी सिर्फ मेरी नहीं, आपकी भी कहानी है। और हम दोनों की कहानी, इसी का नाम है जिंदगी।

सुकून मौसीकी के मार्फत हमने आपके दिलों में दस्तक देने की एक कोशिश की है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपने ख्यालात, अपने विचार हमारे को हमारी ईमेल आईडी radiodasta@gmail.com के ऊपर जरूर भेजें, ताकि हम अगले प्रोग्राम आपकी मर्जी के मुताबिक पेश कर सकें। रेडियो वितस्ता की आज की खास पेशकश सुकून मौसीकी में मैं रहा आपका रेडियो दोस्त नरेश शर्मा, आपका हम सफर।

और अब दीजिए अपने इस दोस्त को इजाजत, फिर मिलता हूँ किसी और प्रोग्राम के बीच में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

0: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
1: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: आइए जानते हैं कि सरकार की क्या जिम्मेदारी है आंगनवाड़ी के लिए। भारत जी, अब बात करते हैं इस पूरी मुहिम में सरकार की तरफ से क्या क्या किया जा रहा है, क्योंकि जिम्मेदारी साझा तो है पर शुरुआत सरकार को ही करनी होती है।
1: बिल्कुल, सबसे पहले तो 2018 में शुरू हुआ पोषण अभियान, जिससे अब मिशन पोषण 2.0 के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका मकसद है कुपोषण के मुद्दे को जड़ से, यानी एक जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर हल करना, गर्भवती महिला से लेकर छोटे बच्चे और किशोरियों तक।
0: और इसी के साथ चल रहा है मिशन सक्षम आंगनवाड़ी कार्यक्रम, जिसके तहत देश भर के करीब 2,00,000 आंगनवाड़ी केंद्र को हर साल करीब 40,000 की दर से सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है।
1: इसका मतलब क्या है अनु, थोड़ा समझाइए हमारे श्रोताओं को।
0: इसका मतलब है बेहतर भवन, पीने के पानी की सुविधा, चालू हालत में शौचालय, हाथ धोने के लिए साबुन, बच्चों के खेलने और सीखने के लिए बेहतर माहौल। सरकार ने तो आंगनवाड़ी भवन निर्माण की लागत भी बढ़ाई है। पहले जो राशि 12,000 रुपए थी, उसे बढ़ाकर 36,000 रुपए कर दिया गया है, ताकि केंद्र मजबूत और सुविधाजनक बन सके।
1: और गुणवत्ता की निगरानी के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं ना?
0: जी हाँ, सरकार ने सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि आंगनवाड़ी केंद्रों में मिलने वाली भोजन की गुणवत्ता बनी रहे। हर जिले में जिला मजिस्ट्रेट को इसकी निगरानी के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है, और हर महीने एक जिला पोषण समिति की बैठक होती है, जिसमें प्रगति की समीक्षा होती है।
1: और डिजिटल निगरानी के लिए भी कुछ किया गया है?
0: बिल्कुल, पोषण ट्रैकर ऐप, यह मार्च 2021 से शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण शासन उपकरण है, जिसके जरिए हर आंगनवाड़ी केंद्र की गतिविधियों, बच्चों के वजन, लंबाई और पोषण स्थिति का रियल टाइम डेटा दर्ज होता है। आज इस पर करोड़ों लाभार्थी पंजीकृत है।
1: यानी सरकार अब सिर्फ योजना बनाकर नहीं छोड़ रही, बल्कि उसकी निगरानी और जवाबदेही भी सुनिश्चित कर रही है।

0: आइए अब जानते हैं आंगनवाड़ी बच्चों के लिए कितनी सहयोगी हो सकती है। भारत जी, अब बात करते हैं कि यह सब बच्चों के लिए असल में कितना मायने रखता है।
1: देखिए अनु, आंगनवाड़ी केंद्र सिर्फ खाना बांटने की जगह नहीं है, ये 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों के लिए पोषण, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और शुरुआती शिक्षा यानी प्रारंभिक बाल अवस्था विकास का सबसे पहला और सबसे अहम केंद्र है।
0: सही कहा, अगर किसी बच्चे को शुरुआती सालों में सही पोषण और देखभाल मिल जाए तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास जीवन भर के लिए मजबूत नींव पर टिकता है। और यही वजह है कि कामकाजी महिलाओं के लिए भी सक्षम आंगनवाड़ी, क्रेच और सखी निवास जैसी सुविधाएं शुरू की जा रही हैं, ताकि माँ काम पर जाए तो बच्चा सुरक्षित हाथों में रहे।
1: और किशोरियों के लिए भी तो अलग से ध्यान दिया जा रहा है अनु।
0: जी हाँ, पोषण 2.0 के तहत पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिलों में लाखों किशोरियों की पहचान की गई है, ताकि उन्हें भी इस योजना का लाभ मिले और स्कूल छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्या में भी उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है।
1: यानी ये सिर्फ छोटे बच्चों तक सीमित नहीं बल्कि किशोर अवस्था तक फैला हुआ एक व्यापक ढांचा है।

0: आइए अब जानते हैं जन भागीदारी और समाज की भूमिका।
1: तो भारत जी, अब सवाल यह उठता है कि हम आम नागरिक इसमें क्या योगदान दे सकते हैं?
0: बहुत कुछ अनु। सबसे पहले तो अपने आसपास के आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़िए। अगर वहाँ पानी, शौचालय या साफ सफाई की कोई कमी दिखे तो उसे स्थानीय प्रशासन तक पहुँचाइए। बच्चों को नियमित रूप से केंद्र भेजिए। पोषण संबंधी जानकारी अपने पड़ोसियों और परिवार के साथ बांटिए।
1: और यही तो पूरी थीम का सार है, हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। जब तक समुदाय खुद आगे बढ़कर इसे अपना नहीं मानेगा, तब तक सिर्फ सरकारी योजनाएं पूरा असर नहीं दिखा पाएंगी।
0: बिल्कुल सही, यही वजह है कि इस साल के अभियान में जन भागीदारी का केंद्र बिंदु बनाया गया है। रैली, गोद भराई, अन्नप्राशन जैसे कार्यक्रम, पोषण मेले, ये सब आयोजित किए जा रहे हैं ताकि हर परिवार इस मुहिम से सीधे जुड़ सके।
1: तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम से हमने जाना कि राष्ट्रीय पोषण माह 2026 सिर्फ एक सरकारी अभियान नहीं, बल्कि एक ऐसा मंच है जहां सरकार, समाज और परिवार मिलकर हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प लेते हैं।
0: बिल्कुल अनु, आंगनवाड़ी केंद्र मजबूत होगा तभी हमारा भविष्य यानी हमारे बच्चे मजबूत होंगे। और ये जिम्मेदारी अकेले सरकार की नहीं, हम सब की है।
1: पोषण केवल भोजन से जुड़ा विषय नहीं है, यह हमारे देश के आने वाले भविष्य और मानव संसाधन के विकास से जुड़ा मुद्दा है।
0: बिल्कुल सही, FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के माध्यम से हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करते हैं, अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़े और वहां उपलब्ध सरकारी सुविधाओं की जानकारी लें। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के नियमित स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण में सहयोग करें। पोषण अभियान को एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानकर अपने परिवार और आसपास जागरूकता फैलाएं।
1: क्योंकि जब हर घर सही पोषण पाएगा तभी हमारा भारत कुपोषण मुक्त और सशक्त बन पाएगा।
2: पोषण से खुशहाल बने हर बच्चा।
0: इसी जानकारी के साथ अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। आप सुनते रहिए आपका अपना और मनपसंद रेडियो स्टेशन FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, जो आपकी जिंदगी का हमसफर है और साथ ही आपके जीवन का प्रवाह भी। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे लेते हैं हम विदा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: अब मुझे भी दीजिए आज्ञा, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार, जय हिंद।

तू कहीं और है, तेरा जिक्र मेरे साथ रहे, मैंने तकिए पे तेरा नाम लिख के

उस गांव की गलियों से जब जब तू गुजरा होगा, चांद भी आसमां से तुम्हें देखने को उतरा होगा। बेताब धड़कनों ने छिप छिप के हर नजर से दिलो जा जिगर को तेरे नाम कर दिया होगा। बेताब धड़कनों ने छिप छिप के हर नजर से दिलो जा जिगर को तेरे नाम कर दिया होगा।

हमारे गजल आप सुन रहे हैं रमेश मराठा के साथ। फिर ओढ़ लिया आंचल हमने अपने आंसू का, बज़्म तन्हाई में छीड़ा जब तेरी यादों ने। फिर ओढ़ लिया आंचल हमने अपने आंसू का, बज़्म तन्हाई में छीड़ा जब तेरी यादों ने।

रात मचा गया कहर, बहुत अजाब था इंतजारी सहर। हम ही बेहोश थे वरना रक्स करते थे सामने साकर, कदम कदम पे साथ ही आखिर। जिंदगी पिला गई जहर, तुम्हें पाना कोई बात नहीं, क्या करे रूठी है मुकद्दर।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक हर दिन रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज के प्रसारण पसंद आए होंगे और आप अपना फीडबैक भी हमें भेजेंगे अपने सुझावों के साथ। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। आज के लिए बस इतना ही। स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:50। हम प्रसारण करते हैं अंबाला छावनी से और बात करते हैं वो जो रखती हो आपसे सरोकार। दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा ये सफर भी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। आशा है कि ये समय आपके लिए सुकून भरा रहा होगा और आपकी शाम को थोड़ा और सुहावना बना गया होगा। दोस्तों, आज बात करते हैं एक बेहद जरूरी विषय पर, और आज का विषय हमने चुना है स्वस्थ ही असली धन है। आज के दौर में हम पैसा कमाने, करियर बनाने और सुख सुविधाएं जुटाने की दौड़ में इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपनी सेहत का ख्याल रखना भी भूल जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि चाहे हमारे पास कितनी भी दौलत क्यों ना हो, अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो वो सारी सुख सुविधाएं बेमायने हो जाती हैं। स्वस्थ ही वो नींव है जिस पर हमारी हर खुशी और सफलता टिकी होती है। आजकल की अनियमित जीवन शैली, तनाव, गलत खानपान और शारीरिक गतिविधियों की कमी ने कम उम्र में ही लोगों को कई बीमारियों का शिकार बना दिया है। जरूरी है कि हम रोज थोड़ा समय व्यायाम, योग या सैर के लिए निकालें, संतुलित और पौष्टिक भोजन करें, पर्याप्त नींद लें और नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की जांच करवाते रहें। दोस्तों, याद रखिए, पहला सुख निरोगी काया। इसलिए अपने काम और सपनों के साथ साथ अपनी सेहत को भी उतनी ही प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि स्वस्थ तन और मन ही एक सुखी और सफल जीवन की असली कुंजी है। आप सभी श्रोताओं से मैं अनुरोध करता हूं कि अगर कोई भी तकलीफ आपको महसूस हो, समय बिना गवाएं तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, राय लें और उसके बाद आगे की प्रक्रिया को जारी रखें, ताकि आप स्वस्थ रहें। और अगर आप स्वस्थ हैं तो हमारा समाज स्वस्थ है, हमारा समाज स्वस्थ है तो हमारा देश भी स्वस्थ रहेगा, और हम सभी मिलके तरक्की भी करेंगे और देश को आगे भी लेके जाएंगे। यह था आज का विषय, और उम्मीद करता हूं कि इस विषय से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। जाने से पहले आपके लिए हर दिन कुछ पंक्तियां ले आता हूं। आज की पंक्तियां आप सभी के नाम, आज की पंक्तियां यूं है, वितस्ता कहती है हर लहर एक नया सफर है, वितस्ता कहती है हर लहर एक नया सफर है, ठहराव नहीं बस आगे बढ़ना ही उसका हुनर है। वितस्ता कहती है हर लहर एक नया सफर है, ठहराव नहीं बस आगे बढ़ना ही उसका हुनर है। जिंदगी भी इसी तरह बहती रहनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी भी इसी तरह बहती रहनी चाहिए। हर मोड़ पर कुछ नया सीखना हो, सीखना ही तो असली सफर है। हर मोड़ पर कुछ नया सीखना ही तो असली सफर है। जी हाँ दोस्तों, ये थे आज की चार पंक्तियां आपके लिए, और जाते जाते आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण

देता हूं कल 24 सितंबर 2026 बृहस्पतिवार को। जो कार्यक्रम आपके लिए लाए हैं वो इस प्रकार है। सभा की शुरुआत होगी सुबह 5:58 पर। वंदे मातरम से हम करेंगे शुरुआत और लाएंगे आपके लिए एक सुविचार। 6 बजे सुनेंगे आप भक्ति संगीत और 7:05 पर सुनहरे पल एपिसोड 4 होगा। मोहिंदर कपूर पर तैयार किया गया, पेश करेंगे आरजे किरणी। 8:30 बजे सकारात्मक कहानियों का समय होता है। आप सुनेंगे कहानी एपिसोड 1, शीर्षक होगा डॉक्टर बाबू, पेश करेंगे नरेश शर्मा। 9:30 बजे दोस्ती अनमोल कार्यक्रम होगा एपिसोड 1 और 10:05 पर सरफरोशी की तमन्ना। हम बात करेंगे अभिनंदन वर्धमान की, जो वायुसेना पायलट थे, और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे भारत सोपोरी। संगीत की सभा जारी रहेगी। बृहस्पतिवार को दिन के 2 बजे आप सुनते हैं साइबर क्राइम अलर्ट, साइबर अपराध से हम कैसे बचें, उसके क्या क्या बचाव है, उसके बारे में हम आपसे इन एपिसोड्स में बात करते हैं, आपको सचेत करते हैं, ताकि आपकी गाड़ी कमाई किसी गलत व्यक्ति के हाथ में ना चली जाए। 6 बजे होगा भक्ति संगीत, 6:30 बजे शाम में गजल और 7 बजे होगा कसक ऐसा साथ की एपिसोड 1, पेश करेंगे नरेश शर्मा। संगीत के बाद 8:30 बजे हर दिन होता है कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है तुम भीग जाते। तो ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का। आशा करता हूं कि आप अपना फीडबैक और अपनी जानकारी हमें भेजेंगे। अगर आप अपने अनुभव अपने एक्सपीरियंस से अंबाला की जनता का मार्गदर्शन करना चाहते हैं तो जरूर अपने बारे में हमें लिखे, फीडबैक लिखे, अपनी फरमाइशें अगर भेजना चाहते हैं, किसी पुरानी हिंदी फिल्म गीत से हरियाणवी या पंजाबी गीत सुनना चाहते हैं, तो हर शुक्रवार को दिन के 2 बजे हम कार्यक्रम करते हैं आपकी फरमाइश। तो आप ये सारी जानकारी भेजिए हमारे स्टूडियो के नंबर पर, जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। ये सारी जानकारी टीम रेडियो वितस्ता की कैजुअल अनाउंसर अनु ने तैयार की थी। तो श्रोताओं, यही समेटते हैं आज का ये प्रसारण। भरोसा है कि ये वक्त आपके साथ अच्छा बीता होगा और आपके दिन में थोड़ी मिठास घोल गया होगा। तो मैं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी अब लेता हूं आपसे विदा। FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, और हर दिन सुनिए सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक। कल सुबह तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।